0: सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Rachi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही हो कि जानू मानू आई एम ऑन अ डाइट, लेकिन जानू मानू को मिलने से पहले जो दो पराठे आप ठूस के जाते हो उसकी सच्चाई आपके बॉयफ्रेंड को पता चल गई, कैसा लगेगा उसे यार?
3: The secret box.
2: अगर ऐसे ही सीक्रेट कन्फेशंस आपकी जिंदगी में है अबाउट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड FB. और राइट नाउ मेरे साथ हैं मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, हाउ आर यू?
2: मैं तो अच्छी हूँ. आपने मुझे जब अपनी कन्फेशन भेजी ना तो मैं हंस हंस के थोड़ी सी मर गई थी कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं सच में. और अब मैं वो कन्फेशन आपके जुबान से सुनना चाहती हूँ.
4: शुक्र है आप सिर्फ हंस रहे थे, मेरे को नहीं लगा, मुझे लगा आप सीधा कहोगे छी
2: मतलब
4: कैसे लोग
2: हैं. सोचा तो मैंने यही था कि छी कैसे लोग हैं, बट मैं बोलना नहीं चाहती थी.
4: देखो भाई ऐसा है कि भाई मेरी एक दोस्त है,
2: हाँ,

0: मुझे पूरी तरह से फ्रेंड जोन किया हुआ है, ठीक है. मतलब आई यूज टू हैव फीलिंग्स फॉर हर, बट वो ना डाई डाउन हो गई. बट लेकिन ना वो अब वो ना देखो अब ऐसा है कि ना तुम्हें ना छेड़ना नहीं चाहिए फीलिंग को ना, यू नो मैंने करी थी ना सेटल, उसको मैंने कर दी थी सेटल की भाई नहीं रहने दे छोड़. अब लेकिन क्या है कि ना उसका बॉयफ्रेंड बना हुआ, ठीक है यार. वो मेरे साथ ना मेरे को मतलब अब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करे ना ये सारी बातें, वो मेरे को बताती है वो क्या करती है क्या नहीं करते, ठीक है. वो पूरी की पूरी सेक्स स्टोरीज यार मेरे को सुनाती रहती है अपनी. तो आई डोंट नो, देखो भाई मेरे को तुम बार बार छेड़ोगे तो वो छेड़ जाता है इंसान,
1: राइट. तो वो आपको कैसे छेड़ रही है, वो तो अपनी आपको स्टोरीज बता रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड और मैं ये करते हैं, हम गैसिंग यही बता रही है.
0: यार प्रॉब्लम दोस्ती ये है कि फिर जब वो बताती है ना तो खुद के अंदर उस बंदे की जगह मेरी शक्ल मेरे को खुद दिखने लग जाती है. मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है यार, मतलब आई एम गेटिंग वेट ड्रीम्स मैन, सॉरी.
1: You know what I'm glad about, Mystery Caller, कि आपने जब मुझे ये बताया है तो आपने ये नहीं बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. मैं तो आपको यही बोलती कि यू कैन मेक फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द वॉशरूम, बट लकीली इट्स जस्ट सेकंड.
0: वॉशरूम भी गए थे, बट वो हम जो स्टेशन है ना वो पार हो चुका है वो वाला, you know? Now it's getting into my head.
1: You know, only, I'm glad that it's getting only into your head. Main aur ja-

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Roshi Baba! Roshi Baba!
3: Roshi Baba ki!
4: Calm down, my bhagjano. I'm going to give you a very important piece of advice aapke relationships ko ekdam awesome rakhne ke liye. Apni zindagi mein kuch bhi kar lena, kisi ko bhi date kar lena, but do not date someone out of pity. Kyunki sympathy wali feelings hai na, wo 2-3 mahine mein ur jati hai. Aur uske baad you are left with this person and a relationship. Na aap is insaan ko chahte ho, na aap is relationship ko chahte ho, aur kyunki aap sympathy ki wajah se andar gaye the is relationship ke, ki hi is bechare ko koi pyar nahi karta, aap is bechare को कैसे बताओगे कि आप भी इस बेचारे को प्यार नहीं करते हो? यू रियलाइज हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस इज. इस सब कॉम्प्लिकेशन से दूर रहने के लिए, नो मैटर हाउ बैड यू आर फीलिंग फॉर समवन, कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें इतनी बुरी तरह से धुतकार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लीज डू नॉट एंड अप डेटिंग दैट पर्सन. यू विल रिग्रेट दैट एंड वेलकम इन एडवांस. ऑन दैट नोट, अगर आपके पास भी कोई रिलेशनशिप टिप या ट्रिक है दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, Why don't you hit me up Insta par ya FB par? I'll be so happy to talk to you. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. So find me on the gram or Facebook. And while you do that, kahi mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: A.G. the Gangster.
1: Mitchie.
2: R-O-C-H-I-E.
3: Roshi, Roshi.
1: Mitchie Roshi.
4: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
5: क्या आपने नोटिस किया है कि आपने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कांड किए हैं ऑन अ सैटरडे? आई डिडंट एक्चुअली बिलीव दिस जब तक मैंने एक रिसर्च नहीं पढ़ी जिसमें लिखा था कि सैटरडे एक ऐसा दिन होता है जहां पर लोगों के हॉर्मोन्स इतने हाई होते हैं और इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वीकेंड होता है, अगले दिन कॉलेज नहीं जाना होता, ऑफिस नहीं जाना होता, याडा याडा याडा, दैट मोस्ट पीपल आर द हैप्पीएस्ट एंड देयर स्टूपिडेस्ट बेस्ट ऑन अ सैटरडे. एंड आई वॉज लाइक, मैं इसे रिफ्यूट कर सकती हूँ, मेरे पास 14 साल ऑफ जर्नलिंग है. तो मैंने अपने हर जर्नल के सैटरडेज को मैप किया एंड You know what? You will not believe this. I swear, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि सैटरडे को ही मैंने जिंदगी के सबसे अजीब और गरीब कांड किए हैं, सबसे मायूसी के काम करे हैं, सबसे बेवकूफ़ी के काम किए, सबसे ज़्यादा डांट मैंने सैटरडे को खाई है. नाउ फिगर आउट कि इस आने वाले सैटरडे को आप ऐसा कौन सा काम करने वाले हो जो आप मंडे को उठ के रिग्रेट करने वाले हो, एंड अगर आप ऐसा ऑलरेडी कर चुके हो. इस वीकेंड आपने इतने गलत काम किए हैं कि अब पूरे हफ्ते आप बैठकर सिर्फ रो और तड़प रहे हो. देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप, मेक दैट कन्फेशन एंड आई विल रोशिफाई यू. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, हिट मी अप, डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
6: जब

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La vilpa la burga. Milci, burga. Burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी. तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे हैं.
3: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: खुद गुस्से में
3: आप क्यों गई 10:30 बजे? क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे
2: फोन
3: रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
2: हेलो.
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को
2: लेकर.
3: कोमल
4: कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी 10:30 बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं
4: जी. मैं
2: मेरे को गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
4: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू को.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अब जिंदगी में क्या हो रहा है, हमेशा दुविधा की तरह एक तरफ आपको खाना पसंद है, एक तरफ आपको वो लड़की पसंद है जिसे फिट लड़के पसंद है। अब आप क्या चूज करोगे? अगर आप हिम्मत हो ना, तो हिम्मत ने मुझे क्वेश्चन लिखकर भेजा एंड ही सेड इंस्टेड ऑफ मी फिगरिंग आउट कि मुझे क्या करना चाहिए, आप अपनी फेवरेट फ्रेंड जो एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। एंड विद मी ऑन द शो राइट नाउ इज दैट एफोरमेंशन्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा चावला। हाय शिल्पा। शिल्पा, हिम्मत ने ये जो सवाल मुझसे पूछा है आपसे पूछने के लिए, वो ये है कि बेचारा उसे खाना बहुत पसंद है एंड ही

0: ऐसे मेरा वेट लूज हो जाए, अब वो 12 किलो ओवरवेट है, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड वे ऑफ लूजिंग वेट?
1: ओके, सो इंटरमिटेंट इज अमेजिंग, बट उससे पहले समझना है इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है. इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली हमारे पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है दिन, जिसमें एक ईटिंग विंडो होती है और एक फास्टिंग विंडो होती है.
0: right.
1: कई लोगों की कैपेसिटी होती है फास्टिंग रखने 12 आवर्स, कईयों की 14, कईयों की 16. सारी अमेजिंग है, बट बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कहाँ पे आपने रुकना है. फास्टिंग विंडो को बंद करना है और ईटिंग विंडो को स्टार्ट करना है. नाउ इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन लूजिंग, पर इसके साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पर ये वेट लॉस में सबसे ज्यादा रामबाण का काम तब करेगी अगर आपकी डाइट कैलोरी डेफिसिट होगी तो. अगर आप ईटिंग विंडो में भी हेवी फूड खा रहे हैं और आप अपने बीएमआर और बीएमआई के हिसाब से खाना कैलोरी डेफिसिट में नहीं लेके जा रहे हैं तो ये आपका वेट लॉस नहीं करेगी.
0: एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर काइंड ऑफ वंडरिंग कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली आपको जितने कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में टू गेट बाय इन लाइफ, आपको उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करना है.
1: yes, जैसे आपका बीएमआर निकलता है.
0: बीएमआर कैसे चेक करते हैं?
1: हाँ, तो बीएमआर वैसे तो हमारे पास मशीन होती है. हम अदरवाइज अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट्स लाइक केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इन हाइट. दिस इज द फॉर्मूला. और नहीं तो हमारे पास गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आप उसमें अपना हाइट और वेट इन मीटर्स आप डालेंगे तो आपको वो आपका बीएमआर निकाल के देगा. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल और वो सारा दिन बैठा रहता है, उसकी भी एक बीएमआर होती है. मतलब उसको हार्ट वर्किंग के लिए, आई ब्लिंकिंग के लिए, सलाइवा बनाने के लिए, किडनी क्लीनिंग के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो उसको हम बीएमआर में काउंट करते हैं. वो अगर आप उतना भी खाना खाएंगे तो आपका वेट मेंटेन रहता है, बट देन यू नीड टू कट डाउन ऑन दैट. यू नीड टू कट डाउन फ्रॉम योर बीएमआर एज वेल, लाइक 500 कैलोरीज एटलीस्ट फ्रॉम योर बीएमआर, सो दैट यू लूज अराउंड

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये सूचना जनहित में जारी है फॉर ऑल यू वीमेन आउट देयर जिनके बच्चे हैं 1 साल का 10 साल का 12 साल का 20 साल का इट डज नॉट मैटर फॉर ऑल हिज पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स अपने बेटे को ना थोड़ी तमीज और अकाउंटेबिलिटी और औरतों की रिस्पेक्ट सिखा दो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपका लाडला मुन्ना तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है उसकी गर्लफ्रेंड ये नहीं समझेगी वो ये नहीं सोचेगी अगर उसने बदतमीजी की या अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई तो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकता है कि वॉयलेंस के उस लेवल पर पहुंच जाए जहां उसके जूते का बैक एंड आपके लड़के के बैक एंड से इंटरैक्ट कर रहा होगा आई मीन इट रिसेंटली काइंड ऑफ हैपेंड विद मी दैट देयर वाज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन और उसने ना एक माइनरली डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ की इन अ ग्रुप जिसमें मैं भी थी एंड दैट He wasn't intending to be disrespectful, but it came across like that for me. And I was like, ये इसकी गलती नहीं है अगर इसकी मम्मी ने से थोड़ी सी इज्जत विज्जत सिखाई होती लड़कियों के लिए तो आज वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहा होता So for all you moms out there, जो अपने बेटे को ट्रेन नहीं कर रही हैं उनकी गर्लफ्रेंड को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं लड़कियों की रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी कैसे सिखाते हैं सो हम सब की एक थोड़ी सी जनरल सेवा कर दीजिए अपने बेटे को ऑलरेडी छोटी उम्र में सिखा पढ़ा के बड़ा कीजिए ताकि वी जस्ट हैव देम टू लव देम नॉट टू ट्रेन देम ऑन दैट नोट अगर मेरी तरह आपके अंदर भी गुब्बार भरा हुआ है Why don't you talk to me about it, darling? मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE Find me on the gram या Facebook. We'll get talking and while you do that, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना सुनते रहो मिर्ची It's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है, स्पेसिफिकली आपका पार्टनर, जो आपके गोल्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करता है, देन दैट पर्सन रियली इज अ कीपर. अगर आप सारी जिंदगी इनटू द सनसेट वॉक नहीं कर रहे हो तो भी. आई रिमेम्बर जब मैं अपनी पहली किताब लिखने के बारे में सोच रही थी, आई ब्रॉट इट अप विद माई देन बॉयफ्रेंड, और मैंने मतलब बहुत शर्माते शर्माते बोला, क्योंकि मैं मतलब नॉर्मल जर्नलिस्ट थी, कि यार मैं सोच रही हूँ एक सेल्फ हेल्प की किताब लिखती हूँ. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक, व्हाई नॉट? आई वाज लाइक, बट मैंने कभी किताब नहीं लिखी और सेल्फ हेल्प इज़ अ वेरी हैवी ड्यूटी थिंग. तो ही सेड, यार तू कुछ भी कर सकती है. और बस उस एक सेंटेंस की वजह से मैंने अपनी पहली किताब लिख भी ली, उसे पब्लिश भी कर दिया, फॉलोड बाय माई सेकेंड बुक. आज हम दोनों एक रिलेशनशिप में नहीं है, बट जब भी आई लुक बैक एट दैट टाइम इन माई लाइफ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड तब सपोर्टिव नहीं होता तो शायद मेरी पहली किताब नहीं होती, एंड आई वुड हैव नेवर नोन व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ राइटर. मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो एंड आपके पार्टनर की कोई बहुत ही वियर्ड AF ड्रीम है, जस्ट सपोर्ट इट. यू नेवर नो कि आपका ये कहना कि हाँ तू कर सकता है यार, या तू कर सकती है ब्रो, यू आर सो गुड एट दिस, दैट्स ऑल दे नीड टू बिकम द मेगा रॉक स्टार दैट दे थिंक दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग. एंड अगर आप ऐसा कर चुके हो एंड यू हैव दिस अमेजिंग सक्सेस स्टोरी टू टॉक अबाउट, Why don't you hit me up and let's get talking. Mera

0: Mirchi. Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: वेरी फाइन, थैंक यू।
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
2: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप, तेज़ बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े।
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव बोले
2: तो मिस्टर श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा
2: तो सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने बॉयफ्रेंड को बोल रहे हो कि जानू मानू आई एम ऑन अ डाइट, लेकिन जानू मानू को मिलने से पहले जो दो पराठे आप ठूस के जाते हो उसकी सच्चाई आपके बॉयफ्रेंड को पता चल गई, कैसा लगेगा उसे यार?
3: द सीक्रेट बॉक्स।
2: अगर ऐसे ही सीक्रेट कन्फेशंस आपकी जिंदगी में है अबाउट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड FB और राइट नाउ मेरे साथ हैं मेरे मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
4: हाय रोशी, हाउ आर यू?
2: मैं तो अच्छी हूँ। आपने मुझे जब अपनी कन्फेशन भेजी ना तो मैं हंस हंस के थोड़ी सी मर गई थी कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं सच में, और अब मैं वो कन्फेशन आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ।
4: शुक्र है आप सिर्फ हंस रहे थे, मेरे को लगा, मुझे लगा आप सीधा कहोगे जी
2: मतलब
4: लोग
2: हैं। सोचा तो मैंने यही था कि जी कैसे लोग हैं, बट मैं बोलना नहीं चाहती थी।
4: देखो भाई, ऐसा है कि भाई मेरी एक दोस्त है,
2: हाँ,
4: जिसने मुझे पूरी तरह से फ्रेंड जोन किया हुआ है, ठीक है। मतलब आई यूज टू हैव फीलिंग्स फॉर हर, बट वो ना डाई डाउन हो गई। बट लेकिन ना वो अब बोल ना, देखो अब ऐसा है कि ना तुम्हें ना छेड़ना नहीं चाहिए,
2: करेक्ट, ऑब्वियसली
4: फीलिंग को ना, यू नो, मैंने करी थी ना सेटल, उसको मैंने कर दी थी सेटल कि भाई नहीं रहने थे छोड़। अब लेकिन क्या है कि ना उसका बॉयफ्रेंड बना हुआ, ठीक है यार, वो मेरे साथ ना, मेरे को मतलब अब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करे ना ये सारी बातें, वो मेरे को बताती है वो क्या करती है क्या नहीं करते, ठीक है। वो पूरी की पूरी सेक्स स्टोरीज यार मेरे को सुनाती रहती है अपनी, तो आई डोंट नो। देखो भाई, मेरे को तुम बार बार छेड़ोगे तो वो छेड़ जाता है इंसान,
2: राइट। तो वो आपको कैसे छेड़ रही है? वो तो अपनी आपको स्टोरीज बता रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड और मैं ये करते हैं, हम गैसिंग यही बता रही है।
4: यार प्रॉब्लम दोस्ती ये है कि फिर जब वो बताती है ना तो फिर उसके अंदर उस बंदे की जगह मेरी शक्ल मेरे को खुद दिखने लग जाती है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मतलब आई एम गेटिंग वेट ड्रीम्स मैन, सॉरी।
2: You know what I'm glad about, Mystery Caller, कि आपने जब मुझे ये बताया है तो आपने ये नहीं बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं तो आपको यही बोलती कि यू कैन मेक फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द वॉशरूम, बट लकीली इट्स जस्ट सेकंड।
4: वॉशरूम भी गए थे, बट वो हम जो स्टेशन है ना वो पार हो चुका है वो वाला, you know? Now it's getting into my head.
2: You know, only, I'm glad that it's getting only into your head. मैं और जानना नहीं चाहती हूँ यार, मिस्ट्री कॉलर बहुत हो गया आपका। क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ? और जब मैं रोशिफाई करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके रोशिफिकेशन ले, लेकिन गंदे विचार ना सोचें। आप ऐसा कर सकते हो? आपकी आवाज सुन के लग तो नहीं रहा, बट हियर इट गोज। आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर। आई होप योर बेस्ट फ्रेंड वॉज नॉट लिसनिंग टू दिस। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह ऐसा कन्फेशन है, आई टोटली वांट टू हियर इट। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: किसी दिग्गज इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि जब तुम प्यार करो तो इसलिए प्यार मत करना कि इस इंसान से मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, बट प्यार इसलिए करना क्योंकि तुम्हें सच में उस इंसान से मोहब्बत है। जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तब ऑटोमेटिकली वो एंड गेम शादी में बदल ही जाता है। लेकिन जब हम किसी से ये सोच के प्यार करते हैं कि यार ये बंदा सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है, इससे शायद एक साल में शादी कर भी लेंगे, अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो आपकी शादी तो ऑसम होगी, आई होप एंड प्रे, लेकिन उसमें प्यार हमेशा बैकसीट लेगा क्योंकि आपने वो रिलेशनशिप कभी प्यार के लिए शुरू ही नहीं किया था। मुझे याद नहीं आ रहा मुझे किसने ये एडवाइस दी थी यार, बट जिसने भी दी थी ना ये एडवाइस, मैं जिंदगी में एडवाइस कभी नहीं भूलूंगी, देने वाले का नाम ऑलरेडी भूल चुकी हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या हमें प्यार सिर्फ प्यार के लिए करना चाहिए या प्यार के आगे भी और चीज़ें होती है जिसके बारे में सोचना चाहिए बिफोर वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप? आप इसके बारे में जो भी सोचते हो ना, डोंट फॉरगेट टू टेल मी ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड ऑनेस्टली जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इस सैयारा
4: नंबर

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा हैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: Hello.
3: Hello. Hello.
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही. कम आ रही आवाज.
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी.
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल.
2: अच्छा अच्छा.
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है? ये बहुत आवाज कर रही है. एक सेकंड रुको
2: भाई. ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार.
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी. आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर. रमेश इसे बंद कर दे. यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही.
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है. मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे. भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार.
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ. खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया.
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार.
2: चोरी करने के लिए गया.
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया
2: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा.
3: बात सुन,
2: मुझे मरवाएगा. मुझे फोन कर दिया.
3: बात सुन.
2: हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो.
4: सर मेरी बात सुनिए. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था. आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं. आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका.
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से. सर आपके साथ मजाक किया है मैंने. जरा हंस के मेरे साथ एक बार.
3: अब ठीक है.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.
0: सुरेन के साथ only on मिर्ची. It's hot. Number 16.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. ये था मैं और तू by Jasmine Sanilas. And I don't know अगर धुरंधर एक सच्ची कहानी है या it's fiction. But Bollywood filmmakers को सच्ची कहानियाँ पसंद बड़ी हैं. Which is why we love our biopics. And एक और biopic देखने के लिए अब जनता उत्सुक है. सौरव गांगुली की biopic दादा. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं. क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं, वक्त मांगती है. सिर्फ एक MS धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन, पर उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? पल ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

शरारत। 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया, आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार आई हैड गूज़बम्प्स. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramleela in 2013. Yeah. There was Dil Dharakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Kabhi Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Usse apne talent ka andaaza tha. Usse pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन। लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। I told you, आज we about to get a brand new number one song। लेकिन ये गाना brand new है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा number one होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। The number one song on the Mirchi Top 20. Number 1.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: कोमल हाय, आई एम रवि। हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
3: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है।
4: ओके।
3: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं, इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है।
4: राइट।
3: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ। मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को।
4: ओके।
3: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी।
4: हाँ।
3: तो वहाँ मुझे छेड़ा।
4: कितने बजे गई थी आप?
3: 10:30 बजे।
4: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
3: मेरे को एक काम था वहाँ पे।
4: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
3: मुझे बड़ी जरूरी काम था।
4: कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं, आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे, आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
3: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे हैं।
4: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए आप लड़कों को बुरा कहती हैं। आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
3: ये खुद गुस्से में हो रहे हैं।
4: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
3: आप हद से ज्यादा ईव टीजिंग की बात कर रहे हैं।
4: क्या बात कर रहे हैं?
3: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं।
4: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ।
3: नहीं कर सकते आप।
4: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
3: की सुरक्षा की सुरक्षा की बात की
4: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात। हेलो
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर।
3: ओके ओके ओके
4: ओके ओके ओके, मेरी बात सुनिए। कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है। मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ। आप साकेत क्यों कहीं थी 10:30 बजे?
3: मिस्टर, ये आप हैं
4: जी,
3: मैंने आपको गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा।
4: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, मेरे साथ जरा हंस के बोल।
3: ओके कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: कभी तो हंसाए।
1: कर्ज मूवी का जो आइकॉनिक सॉन्ग है ओम शांति ओम, उसमें ना एक बहुत बड़ा गूफ अप है। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब गाने के शुरुआत के 5-6 सेकंड में ही आपको ये गूफ अप देखने को मिल जाएगा। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तो स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पे ऋषि कपूर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। पीछे बैनर पे लिखा होता है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और फिर अगले शॉट में स्टेज के सामने की ऑडियंस को दिखाते हैं, उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो कहता है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। ऑप्शन दिया गया है जो दिल करे आपका मना लो। हो जाती है गलतियां यार, होता है, चलता है, दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: किया।
2: कभी किसी को

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
3: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये गाना, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, रेखा थी और एक वन साइडेड लव स्टोरी थी। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वन साइडेड लव स्टोरी थी एक टाइग्रेस की, जिसने इस फिल्म में काम भी किया है। आप इस फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स देखेंगे तो उस टाइग्रेस को, जिसका नाम भारती था, उसे प्रॉपर क्रेडिट्स भी दिए गए हैं। तो फिल्म का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि काफी सीन्स में ये टाइग्रेस सेट्स पे थी। अब जिस वन साइडेड लव स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ, वो इस टाइग्रेस को हो गया था जी इश्क हमारे बच्चन साहब से। बच्चन साहब जब सेट पे आते थे, खाना खाते थे, उसके बाद ही अपना खाना खाती थी, वरना खाना नहीं खाती थी। How adorable is that? आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है, नहीं देखी आपने फिल्म तो आप जाके देख सकते हैं और ये लव स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों।

जाबाज फिल्म का वो गाना तो आपको पता है, बहुत ही रोमांटिक गाना, जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक डुएट सॉन्ग है, लेकिन ज्यादातर इस गाने में सिर्फ फीमेल सिंगर को क्रेडिट दिया गया है, सपना मुखर्जी को। मेल सिंगर का कहीं नाम ही नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो पता चला कि इसके सिंगर हैं महेश गढ़वी, जो गुजराती फोक एंड लिटरेचर की बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी लेट मनुभाई गढ़वी जी के भाई रहे हैं, और बॉलीवुड में उन्होंने एक दो फिल्मों में गाया। उसके बाद वो और उनकी वाइफ, जिनका नाम आई थिंक नीतू जी है, ये अब्रॉड में स्टेज शोज, लाइव शोज, ये सब करते रहे हैं। लेकिन थोड़ी हैरत वाली बात है कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने जाबाज फिल्म के एक दो गाने और गाए हैं। एक तो जो कवाली है उसमें वो भी उन्होंने गाई है, और जाबाज का जो थीम सॉन्ग है वो भी गाया है। और मुझे ना बहुत टाइम तक लगता था कि इसमें सपना मुखर्जी के साथ मनहर जी की आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवे, ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

वाह वाह, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। मैं जानती हूँ ये कहने के लिए बहुत गलत घड़ी है कि हमारे घर में आज जो बनी थी वो पकौड़ा कड़ी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। थोड़ा सैड गाना हो गया था, मैंने कहा मूड लाइट कर लेते हैं। पकौड़ा कड़ी गर्मा गर्म साथ में जीरे वाले चावल, सलाद और आलू की सब्जी, वाह वाह, ये था मेरा लंच। अच्छा, गम से खुशी की ओर बढ़ते हैं, उसी के साथ एक शेर भी सुनो। शमीम करहानी नाम के शायर हैं, उनका शेर है, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, न मिलो ज्यादा हमसे कहीं प्यार न हो जाए। लव इश्क प्यार मोहब्बत के साथ अगला गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी,
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए गया?
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
4: मेरी बात सुन,
3: माँ का तू मुझे मरवाएगा। मुझे फोन कर दिया
4: मेरी बात सुन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था। आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: आप ठीक है?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

उफ क्या ही गाना है ये, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब ने लिखा है, और कई बार ना ऐसा होता है कि पूरा गाना ही बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुंदर लिखा होता है, लेकिन कुछ लाइंस ना आपका दिल छू जाती हैं। आप बहुत कनेक्ट करते हो उन लाइंस से, कई बार आपको भी नहीं पता होता कि क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो, ऐसी कौन सी याद है जो ताजा हो गई है, ऐसा कौन सा घाव है जो फिर से हरा हो गया है लाइंस को सुन के, या समथिंग अबाउट दोज लाइंस जो आपको बहुत पसंद आ जाती हैं। जैसे इसमें मैं बताऊं आपको कौन सी लाइंस मुझे पसंद है, कहीं किसी रोज यूं भी होता हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने गुजारी होती। उफ गुलजार साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं उसकी भी कुछ लाइंस हैं, मजरू साहब की लिखी हुई। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी। सुन लेते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: तेजाब फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको इस बात का एहसास कब हुआ कि वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे पहली बार रिकॉग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइनी हीरोइनी, तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला अरे मुझे पहचाना, फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने, तो दूसरे को बोलता है देख देख मैं मोहिनी मोहिनी।
0: तो तेजाब की मोहिनी का ये आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

जयकिशन दया भाई पांचाल यानी कि शंकर जयकिशन वाले जयकिशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं इनका जन्म गुजरात में हुआ था और बचपन से इनको संगीत का शौक था। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हारमोनियम बजाने लग गए। माता पिता ने इनका टैलेंट देखकर इनको संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू की। कई गुरुओं से इन्होंने संगीत सीखा। फिर जब टीनेजर ही थे तब ये बॉम्बे आ गए, वहाँ पर भी इन्होंने संगीत सीखा। वहीं पर ये मिले अपने ढंटड़ैन जोड़ीदार शंकर से। ये दोनों भाइयों ने मिलकर जो म्यूजिक बनाया है वो गाने मतलब एंथम बन गए। जैसे कि ये अगला गाना जिसने पता नहीं कितनी सारी शादियों में दुल्हन की एंट्री करवाई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू.

0: दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गाने गाने पे लिखा है इसे फिल्म में लाने वाले का नाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द क्लासिक सॉन्ग खई के पान बनारस वाला, ये ओरिजिनली देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, लेकिन उस फिल्म की पेस से ये मैच नहीं कर रहा था तो ये गाना वहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। फिर डॉन फिल्म की पेस जो है सेकेंड हाफ में, उसमें एक ब्रीदर, एक कॉमिक रिलीफ सॉन्ग चाहिए था, तब इस गाने को इस फिल्म में इंक्लूड किया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: थैंक यू
4: अतुल। वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
4: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: लगे हुए गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो,
3: कच्चा धागा
4: रेस लगा लो 10 पत्ते तोड़े
3: 10 पत्ते तोड़े
4: एक पत्ता कच्चा। इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे 10 पत्ते तोड़े या मिस्टर श्रीवास्तव 10 पत्ते तोड़े 10 पत्ते तोड़े
3: 10 पत्ते तोड़े
4: हिरन का बच्चा।
3: हिरन का बच्चा।
4: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को। मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कोई सुनेगा तो
4: नहीं सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: यूजुअली एक्टर्स से पूछो कि उनका चाइल्डहुड एम्बिशन क्या था, तो वो यही बोलते हैं कि एक्टर बनना था, एक्ट्रेस बनना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जीनत अमान जी। वो जब छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक लिंग्विस्ट बनना चाहती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखकर एक इंटरप्रेटर बनना चाहती थी इन द यूनाइटेड नेशंस। That's really what I wanted to do. I wanted to learn German. Of course, I knew English. Knew a very poor smattering of Hindi. And in school, it was compulsory. Compulsory tha ki hum log French seekhein. To, you know, maine socha ki 5-6 languages seekh lungi aur interpreter ban jaungi.
0: Well, jo unhone socha tha, wo to ye nahi bani. Lekin phir uske baad Miss India Asia Pacific bani, Miss Asia Pacific International bani, phir actress bani, the OG diva of Hindi film industry. क्या ग्लैमरस, क्या हॉट, उफ, ज़ीनत अमान। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

ये तो आपको पता है कि किशोर कुमार जिस शहर में पले बढ़े वो है मध्य प्रदेश का खंडवा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वहाँ उनके कई दोस्त थे। उनका बचपन का एक खास दोस्त था जिनका नाम था बाबू फतेह मोहम्मद, जिनका काम रंगरेजी का था और किशोर दा उनको प्यार से बाबू रंगरेज बुलाते थे। तो ऐसी एक स्टोरी, एक इंसिडेंट है कि 70s में जब किशोर कुमार अपने करियर की पीक पर थे तब बाबू रंगरेज खंडवा से बॉम्बे उन्हें मिलने आए। किशोर कुमार को उनको देखकर लगा कि उनकी फाइनेंशियल हालत शायद थोड़ी ठीक नहीं है। इस वजह से किशोर कुमार ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए अपनी तरफ से, जिन्हें देखकर बाबू रंगरेज ने कहा कि मैं यहाँ इन पैसों से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। और ये सुनकर किशोर दा एकदम भाव विभोर हो गए। ये कहने लगे कि जितना प्यार मुझे खंडवा में मिला है उतना बॉम्बे में नहीं मिला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

सो द अदर डे आई वॉज वॉचिंग दिस फिल्म आशा, 1957 की जो फिल्म है आशा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही फिल्म जिसमें इना मीना डी का गाना है, जिसमें लीड्स में किशोर कुमार वैजयंती माला है। उस फिल्म में मैंने ना छोटी सी प्यारी सी आशा पारेख जी को नोटिस किया जी। उनकी डेब्यू फिल्म तो 1959 में आई थी दिल देके देखो, ये उससे पहले का उनका एक छोटा सा काम था, दो तीन सीन का काम है इस फिल्म में उनका। खैर अभी हम उस फिल्म का गाना सुनेंगे जिसमें पहले नंदा जी को लिया जाने वाला था, लेकिन नंदा जी उस टाइम पे ग्लैमरस रोल्स देख रही थी और ये थोड़ा सिंपल सा रोल था, और समहाउ फिर आशा पारेख जी ने ये रोल किया। फिल्म बहारों के सपने का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग
3: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेज में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: साढ़े दस बजे.
3: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे
3: हैं. गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
2: एडवाइस,
3: खुद गुस्से में. आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे
2: फोन
3: रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर. कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं साढ़े दस बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं जी, मेरे को गुस्सा दिलाया. किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके, कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: प्यास है।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए गया?
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया
3: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
4: एक बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया
4: बहन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है,
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन,

शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर। राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आज रथ यात्रा का पवित्र दिन है, आइए यात्रा से जुड़ी एक गहरी सीख जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, रथ यात्रा का समय है और मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जो भगवान हैं, उनकी जब आकृति बनाई जा रही थी तो उनके जो हाथ और जो पैर है वो पूरा बनाया नहीं गया। विश्वकर्मा जो मूर्ति को आकार दे रहे थे उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि ये जो अधूरापन है इनका, वो ही इनको पूर्ण रूप में रखता है। सो दिस इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ जगन्नाथ जी इज द पूर्ण रूप ऑफ जगन्नाथ जी। बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये बात बोली, तो ये कमी नहीं है, ये इनका पूर्ण रूप है। और जब मैं ये पढ़ रहा था और जब मैं इसके बारे में सुन रहा था तो मैंने सोचा कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूर्ण रूप से, सब कुछ है हमारे पास, शायद मतलब बॉडीली तो सब कुछ है ही ठीक, लेकिन घर में भी रोटी कपड़ा मकान जो, और आजकल तो कहते हैं वाईफाई, वो भी है, तब भी हम कभी कभी अपने आप को ऐसा हमें लगता है कि यार कुछ कमी है, कुछ खल रही है, ये सही नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन मैंने देखा, मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि सब कुछ होते हुए भी हमें कभी कभी लगता है कि यार कुछ नहीं है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ?
4: दो चीजें हैं। एक, मुझे लगता है कि जीवन में भले हम परफेक्ट नहीं हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज तो होते ही हैं, पर उनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आज अगर आप कह रहे हैं कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉ है, कोई कमी है,
3: तो
4: उसके बारे में हाँ अवेयर होकर, रियलाइज करके व्यक्ति को बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन जब वो हम बदल जाएंगे और परफेक्ट बन जाएंगे तब हम कंफर्टेबल होंगे? नहीं। एक होती है संतुष्टता, दूसरी होती है संपूर्णता। कंटेंटमेंट और परफेक्शन, कंटेंटमेंट आज होनी चाहिए। जो भी है, जितना भी है, चाहे बाहर का है, चाहे हमारी खुद के अंदर की स्थिति है, उससे कंफर्टेबल होना, कंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन एक जर्नी है।
3: उस जर्नी को एंजॉय करना जरूरी है।
4: हाँ, मतलब जब तक आप परफेक्ट बनेंगे वो ऐसा है जैसे कोई ट्रैकिंग पर जाता है।
3: हाँ।
4: तो आप पूरी ट्रैक को एंजॉय करते है ना।
3: हाँ।
4: कहीं वेट करते रहते हैं
3: कि जब ऊपर पहुंचेंगे वहां से जो नजारा दिखेगा।
4: वो नजारा भी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि परफेक्शन का नजारा तो सुंदर ही होता है, लेकिन जर्नी को एंजॉय करने के लिए कंटेंट होना, अपने प्रति भी ये सोचना कि जो है, जैसा है, अच्छा है, उससे कंफर्टेबल होना, लेकिन साथ में रियलाइज भी करना कि अभी ये चीज राइट नहीं है, इसको चेंज करना है, वो जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: भगवान जगन्नाथ जी से इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने की एक अनमोल सीख आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अभी ये जो हफ्ता है ये रथ यात्रा का हफ्ता है। 16 जुलाई को रथ निकलती है और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है पुरी में बहुत फेमस

0: और भगवान खुद मंदिर से बाहर निकल के आम जनता से मिलते हैं, राजा हो या रंक, सबसे मिलते हैं। और मुझे ये बहुत खूबसूरत बात लगती है कि ना किसी में कोई भेदभाव, ना फर्क, ना कोई जजमेंट। तो ये जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब भगवान जज नहीं करते हमको, तो इंसान जज करने वाले कौन होते हैं?
1: भगवान एवर प्योर है, इंसान बॉडी कॉन्शियस में आ जाता है। बॉडी कॉन्शियस का मतलब है कि आप बहुत सारे लेबल से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं
0: जी,
1: चाहे वो जेंडर का है, नेशनैलिटी है, रिलीजन है, कास्ट है, पोजीशन, मनी, ये सब अक्वायर्ड है
0: जी।
1: और जितना हम अक्वायर्ड करते जाते हैं, ईगो डेवलप होती जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और फिर ईगो में कोई सुपीरियर है तो कोई इन्फीरियर है। तो अगर आपको लगता है आप सुपीरियर है तो सामने वाला इन्फीरियर है, और वहां से जजमेंट और क्रिटिसिज्म का जन्म होता है। सो बेसिकली वही फर्क है कि वो एवर प्योर है और हम क्योंकि धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होने के कारण, अक्वायर्ड लेबल से आइडेंटिफाई करने के कारण थोड़े इम्प्योर बन जाते हैं, तो वो एक रिमाइंडर का काम करता है कि हमें भी ये लेबल्स छोड़ करके जो हमारा लक्ष्य है, हम कहते भी हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि हम सब आपस में एक परमात्मा के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। आई थिंक दीज आर द डेज जो वो चीज हमें वापस रिमाइंड कराती है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्रिटिसिज्म का सम्मान करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आइए समझते हैं कैसे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एवरी डे ऑन ए डेली बेसिस मुझे मेरी बिना किसी गलती के कुछ सुनना पड़ रहा है, मेरे कैरेक्टर पे, मेरे फैमिली पे, मेरे बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। इस चीज को मैं कैसे अनसुना करूं?
4: अनसुना नहीं करते, आप समझ करके आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि फ्रॉम वेयर पीपल आर कमिंग, देन यू सडनली फील पिटी एंड कंपैशन फॉर देम। जब तक आपको पता नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मोमेंट यू रियलाइज, दैट इज़ वाई नॉलेज पावर कहते हैं ना, आपको नॉलेज मिलती है, आपको समझ मिलती है, तो वो समझ मिलते ही आपका दृष्टिकोण, आपका जो पर्सपेक्टिव है लोगों के प्रति, वो चेंज हो जाता है। अब ना आप हर्ट हो रहे हैं, ना आप गुस्सा कर रहे हैं, ना आप लोगों से नफरत कर रहे हैं। आप समझते हैं थोड़े समय के लिए है, उनका दर्द है वो निकाल रहे हैं, शायद हो सकता है थोड़े समय के बाद यही लोग मेरे से भी प्यार करना शुरू कर दें। When I start playing that role convincingly, शायद फिर यही जो उनका गुस्सा है वो प्यार में बदल जाए। तो आप उतना उसको पर्सनली नहीं लेंगे तो उतना फील नहीं होगा। देखो बाहर क्या हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
3: बिल्कुल।
4: हम कहें लोग ऐसा ना करें तो आप एक को कंट्रोल कर लेंगे, दस को कंट्रोल कर लेंगे, पर सबका मुंह तो आप नहीं पकड़ सकते।
3: सही बात।
4: पर अपना मन तो पकड़ सकते है ना।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Expectations ही दुख का कारण क्यों बनती हैं? आइए इस सच को जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर अन्नू मिश्रा का बहुत ही यादगार रोल वैभव राजगुप्ता ने किया 4 सीजन तक एक ओटीटी सीरीज के लिए, और उसके बाद 5वें सीजन में क्रिएटिव मतभेद के कारण वो नहीं थे प्रोडक्शन टीम के साथ, उनके कोई डिफरेंसेस हो गए थे, और अनंत वी जोशी ने वो रोल किया। अब अनंत वी जोशी के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर मैं

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब परिवार ही सपोर्ट ना करे तब खुद को कैसे संभालें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ज्यादातर क्या होता है सिस्टर, अपने सपोर्ट सिस्टम से ना हमको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। परिवार वाले लोग जो होते हैं उनसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, उनके कारण हम कई बार ऐसा काम कर जाते हैं जो हमको पता भी नहीं होता कि हमें वो क्षमता है। तो सपोर्ट सिस्टम के कारण बहुत कुछ हुआ है, तो जब वही किसी मामले में चुप रहते हैं या साइड हो जाते हैं तब हमें धक्का भी लगता है कि यार ये कैसे हो गया।
4: वैसे तो देखिए, सपोर्ट सिस्टम इसीलिए कहते हैं परमात्मा को बनाना चाहिए क्योंकि वो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं है। दूसरा, अगर आप सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं कभी कभी आपको लगता है वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जरूरी नहीं है उन्होंने भी ऐसा कुछ किया। आप अपने मन में ही सोचते हैं ना, इनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इनको मेरे लिए आवाज उठाना चाहिए, इनको मेरे लिए बोलना चाहिए, ये कॉन्वर्सेशन आपके मन में है। एक्चुअली में वो रियलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सच में आपका सपोर्ट सिस्टम होगा वो जरूर आपको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करेगा। हमेशा बोल करके ही सपोर्ट करना नहीं होता है। पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ सपोर्टिंग, समटाइम्स जस्ट बीइंग देयर इज ऑल्सो सपोर्ट। हो सकता है उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो लड़े आपके साथ,
3: सही बात है,
4: आपके लिए जाकर के गवाही दे, क्योंकि उसके भी कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ रीजंस होंगे, लेकिन वो आपके लिए है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए जैसे हम चाहें, वो भी जरूरी नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाना कभी सही रास्ता नहीं होता। आइए इसे एक नए नजरिए से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: किसी को नीचे गिराकर किसी को ऊपर उठाएं वो भी ठीक नहीं है। कुछ आप ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिसमें सबका भला हो, सब एम्पावर हो, सब अपलिफ्ट हो। एंड वी समटाइम्स हैव ऑप्शंस, कई बार हमें वो एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, रिएक्ट करने का या गुस्सा करने का या चीखने चिल्लाने का। जैसे पिछले दिनों भी मुझे किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी, कहा कि हम गांधीयन एरा से हैं और हमने दोनों समय के प्रोटेस्ट देखे, अभी के भी प्रोटेस्ट देखे हैं। तो जिस समय पर वो कुछ केस हुआ था, आई थिंक कोलकाता में ही जो फिजिकल अब्यूज का केस हुआ था या वही सिटी, तो सब डॉक्टर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हम काम ही नहीं करेंगे, स्ट्राइक के ऊपर चले गए थे मेडिकल कॉलेज के अंदर। एंड शी सेड शी इज़ अराउंड 76, शी सेड मैंने दोनों एरा देखे हैं। उस समय पर भी हम प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन तब हमें क्या प्रोटेस्ट करने के लिए कहा जाता था कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप एक ब्लैक बेल्ट पहने या जो भी, वो एक साइन है कि आप बता रहे हैं कि हम इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं आपके तरीकों से, आपके डिमांड से। लेकिन आप काम डबल करें, आधा भी नहीं, आप डबल काम करें। माना आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जो सोसाइटी को या लोगों को या इनोसेंट लोगों का नुकसान हो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके प्रोटेस्ट इनजस्टिस के खिलाफ है। लेकिन अगर आप भी वही करते हैं और अगर वहां पर कोई इनोसेंट आता है जिसको उस समय जरूरत है और आप हाजिर नहीं है, तो वो भी तो इनजस्टिस हो गया ना उसके साथ। तो दोनों में फर्क क्या है?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सारा का एक सवाल आया है कि जब किसी को ये महसूस होने लगे कि वो अपने आसपास के लोगों पर बोझ बन रहा है तो उसे क्या करना चाहिए।
3: बोझ कई प्रकार के होते हैं। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं
2: जी, बिल्कुल,
3: फिजिकली डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बोझ की बात कर रहे हैं। कई बोझ से हम निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आप अपना कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि आप ना उन पर डिपेंडेंट हो। लेकिन एक जगह है जहाँ हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो है इमोशनल।
2: बहुत अच्छी।
3: फिजिकली डिपेंडेंट भी हम वैसे नहीं चाहते, पर कभी कभी सर्कमस्टांस ऐसी बन जाती है। हम बीमार हैं, हमें उस समय किसी का सहयोग लेना पड़ता है। हम बुजुर्ग हैं तो भी हमें सहयोग लेना पड़ता है। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए हम किसी के ऊपर बोझ हैं। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी मैं नहीं समझती होनी चाहिए। इमोशन हम क्रिएट करते हैं। कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करता है उसके बाद भी अंदर किस प्रकार से फील करना है वो मेरी चॉइस है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। बोझ हमेशा सोच का होता है। बोझ कभी भी जिम्मेवारियों का नहीं होता है, बोझ सोच का होता है। तो बोझ हो सकता है कि आपकी अपनी सोच ही वो बोझ क्रिएट कर रही है, शायद किसी को भी नहीं। बहुत कारणों में कई बार ना ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं होती है। कई बार बुजुर्ग माता पिता को लगता है बच्चों पर बोझ है, वो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो बोझ लगता ही नहीं है। तो हमारी सोच में ऐसा होता है और इसलिए हमें फील होता है कि शायद हम बोझ हैं। तो बोझ सोच का होता है, तो सोच को परिवर्तन।
2: बहुत बढ़िया। बेसिकली आप कह रही हैं कि आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग अ बर्डन, बट इट इज द करेजियस एक्ट ऑफ लेटिंग पीपल लव यू।
3: सी, एज लॉन्ग एज asking for help is not wrong, but वो help के पीछे intent होनी चाहिए अपने को empower करके independent बनाने के।
2: बिल्कुल।
3: कभी कभी आप help मांग रहे होते हैं पर वो help आप अपने को independent बनाने के लिए नहीं, और ही आप धीरे धीरे उस व्यक्ति पर dependent होते चले जाते हैं।
2: वो नहीं है।
3: बाकी हम सबको कभी ना कभी थोड़ी help लगती है। It is okay.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूँ तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम somebody was sharing कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते, हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरी मिर्चीदार, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर अभी फिलहाल तुम कॉफी बना रहे हो, ट्रेन पकड़ रहे हो, ऑफिस ड्राइव पर हो, या फिर बस लाइफ को 5 more minutes बोलकर दोबारा से ब्लैंकेट में बुरेटो बनने की तैयारी कर रहे हो, वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर तुम मंडे हो या फ्राइडे हो, सेम एनर्जी मिलती है तुम्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इन्फ्लेशन सब चीजों में हो सकता है लेकिन फील गुड वाइब्स में नहीं हो सकता। आज के शो में होगा बॉलीवुड का तड़का, देसी नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा लाइफ का ड्रामा, म्यूजिक, मस्ती, हंसी की अनलिमिटेड रिफिल्स, और वो कॉन्वर्सेशन जो बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे अपने पुराने दोस्त के साथ बैठकर चाय पर कर रहे हो। तो सीट बेल्ट लगा लो, या अगर घर पर हो तो टोस्टर से पहले रेडियो ऑन रखो। बर्न टोस्ट से ज्यादा डेंजरस है मंडे मॉर्निंग के ब्लूज। आई नो अभी मंडे मॉर्निंग नहीं चल रहा है बल्कि वीकेंड की वाइब्स हल्की हल्की सी शुरू हो चुकी है। तो धीमी आंच पर लगाते हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए। मैं हूँ प्रिसिला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga.
1: La virtuala burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज़।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सवारी जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना,

0: ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है, मैं तो ये ड्रिल मशीन। यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: अरे क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
0: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
0: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने ले गया
0: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा बहन।
0: तेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया बहन।
0: मेरी बात सुन।
1: हेलो
0: यार कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
0: अब ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो टाइम मशीन को रिवर्स गियर में डालते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे क्या हुआ ये पता करना जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं 622 में, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने हिज्र शुरू की, मेका से मदीना की माइग्रेशन, जिसने इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की। फिर आया 1054, जब ग्रेट स्किज्म हुआ और क्रिश्चियनिटी के वेस्टर्न कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस परमानेंटली अलग हो गए। फिर 1790 में रेजिडेंस एक्ट साइन हुआ और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को अमेरिका की परमानेंट कैपिटल बनाने का रास्ता तय हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1945 में, जब न्यू मेक्सिको डेजर्ट में हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ एटॉमिक एज। 1969 में गूज़बम्प्स वाला मोमेंट, अपोलो 11 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ, एक ऐसा सफर जो इंसान को पहली बार मून तक ले गया। और 1999 में एक दुखद खबर, जॉन एफ कैनेडी जूनियर, उनकी वाइफ कैरोलिन एंड उनकी सिस्टर इन लॉ की प्लेन क्रैश में जान चली गई। नियम माथास विनियर। और ऐसे ही कुछ फैक्ट्स तुम्हें पता हो आज के दिन के बारे में, तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और अभी मैं चलाती हूँ कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, तब तक तुम चिपक के बैठो यहीं पर, कहीं जाना नहीं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और फीफा ने ऐसा प्लॉट ट्विस्ट दे रखा है ना आजकल लाइफ में कि बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
1: इंग्लैंड ने 55th मिनट में एंटनी गॉर्डन के गोल से लीड ले ली और लगा मैच उनका हो गया, लेकिन फिर एंट्री हुई लायनल मेसी की। दो मैजिकल असिस्ट पहले एंजो फर्नांडिस ने 85th मिनट में इक्वलाइजर मारा और स्टॉपेज टाइम में लाउटारो मार्टिनेज ने विनर डाल दिया। फाइनल स्कोर हुआ अर्जेंटीना का 2 इंग्लैंड का 1। अर्जेंटीना अब लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और सैनिको न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन से टकराने भी वाली है। और मेसी सिर्फ 2 असिस्ट ही नहीं, टूर्नामेंट में अब तक उनके 8 गोल्स और 4 असिस्ट हैं और वो गोल्डन बूट रेस में भी टॉप पर पहुंच चुके हैं। 39 इयर्स की एज में भी बंदा फुटबॉल को चीट कोड की तरह खेल रहा है बॉस। इंग्लैंड कोच थॉमस टुकेल का कहना है, वी प्रिपेयर्ड फॉर मेसी ऑल वीक एंड नन ऑफ इट वाज इनफ। और सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मोमेंट वायरल हो रहा है आजकल मेसी से रिलेटेड। 2007 की एक आइकॉनिक फोटो है जहां पर यंग मेसी चैरिटी फोटोशूट के दौरान बेबी लामिन यमाल को नहला रहे हैं। अब देखो यार किस्मत का कनेक्शन, संडे को वही यमाल की स्पेन और मेसी की अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होने वाली है। दैट्स अ प्रीटी कूल फन फैक्ट राइट। तुम्हें भी ऐसे फुटबॉल के कुछ फन फैक्ट्स पता है तो मुझे बताओ। मिर्ची प्रिस मेरा हैंडल नेम है इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए चिपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मौसम का हालचाल ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। देखो अभी टेम्परेचर हो रहा है 72 डिग्री फारेनहाइट के आसपास, इट्स मोस्टली क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है 73 डिग्री के आसपास, यानी कि वेदर कह रहा है मैं सिर्फ एक डिग्री ज्यादा हूँ लेकिन एटीट्यूड मेरा कम से कम 10 डिग्री ज्यादा है। गुड न्यूज ये है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सनशाइन फुल अटेंडेंस देने वाली है आज, तो अगर लंच ब्रेक में थोड़ी सी फ्रेश हवा या क्विक चाय वॉक का प्लान तुम्हारा बना हुआ है ना, टुडे इज योर डे। शाम को 5 बजे के बाद क्लाउड्स जो है फिर से गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हैं, सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर तुम्हारा मूड अचानक से थोड़ा बादलों वाला हो जाए। आज का हाई रहने वाला है 92 डिग्री फारेनहाइट के आसपास और लो जाएगा 72 डिग्री के आसपास। कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी रिलीफ है आज, क्योंकि कल मर्क्यूरी 98 डिग्री तक पहुंच गई थी और आज का वेदर बोल रहा है मैं स्पाइसी हूँ लेकिन एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं हूँ। रेन लवर्स, आज थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पिछले 24 घंटों में 4 मिलीमीटर्स की बारिश देख ली है लेकिन अगले 24 आवर्स में फोरकास्ट में 0 मिलीमीटर्स बता रहा है, यानी कि अम्ब्रेला को आज घर पर रखा जा सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, एयर क्वालिटी अलर्ट आज भी जारी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 149 जो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स की कैटेगरी में आता है। देखो अगर तुमको या किसी को भी एस्मा एलर्जीज या ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ी सी लिमिट में करना बेटर होगा आज के दिन। बाकी हाइड्रेटेड सबको रहना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज द वेदर इज वार्म, एंड साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनो एंड व्हाइल गोइंग आउट वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++। और अब वेदर की बात हो गई है तो मिर्चीदार बैंगर्स सुन लेते थोड़े, तब तक के लिए तो मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवर का 3, जहाँ पर तुम्हें मिलने वाली है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स 22nd ऑफ जुलाई से ब्राजील के कई इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएगा। कॉफी, बीफ, एयरक्राफ्ट, एनर्जी प्रोडक्ट्स और कुछ और कैटेगरीज को इस टैरिफ से एग्जेम्पशन मिलेगी। नंबर 2 पर इंडिया ने शिप ओनर्स और रिक्रूटमेंट कंपनीज को एडवाइस किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते शिप्स पर फिलहाल इंडियन सी फेयरर्स को डिप्लॉय ना किया जाए। ये एडवाइजरी रीजन की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद जारी की गई है। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स मैरिटाइम इंडस्ट्री में है तो उनकी सेफ्टी के लिए अपडेट जरूरी है। एंड फाइनली नंबर 3 पर उड़ीसा के पुरी में आज शुरू हो गई है दुनिया भर में मशहूर लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। लैक्स ऑफ डिवोटीज इस ग्रैंड प्रोसेशन का हिस्सा बन रहे हैं, जहां पर लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा टेम्पल की तरफ रवाना होते हैं। डेटीज वहाँ अगले 9 दिन तक रहने वाले हैं। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको मिर्ची की तरफ से वार्म विशेज। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर के 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब ये कोई गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा
1: धागा,
2: रेस
1: लगा लो,
2: दस
1: पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता
1: कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
1: दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू. श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को. मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ऑलराइट गाना से एक छोटा सा ब्रेक. गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. अब चलो बॉलीवुड की दुनिया से एक खबर सुनते हैं. फिल्म मेकर हनी त्रिहान ने एक इंटरेस्टिंग बात शेयर की है अबाउट दिलजीत दोसांझ रिलेटेड टू हिज फिल्म सतलज, जहां पर दिलजीत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा का रोल निभाते दिखाई दिए हैं. हनी के अकॉर्डिंग जब उन्होंने स्क्रिप्ट दिलजीत दोसांझ को दी तो दिलजीत ने सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को अपने माथे पर लगाया और कहा कि वाहेगुरु, ऐसे इंसान का रोल करने के पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो शर्म की बात होगी. और डायरेक्टर ने बहुत इंसिस्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक फी जरूरी है, तो दिलजीत ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, एक रुपए दे देना. अब वैसे तो इंडस्ट्री में फीस करोड़ में जाती है, लेकिन कभी कभी एक रुपए की वैल्यू भी स्टैंडिंग ओवेशन जीत सकती है. और ऑनेस्टली यही स्टोरीज रिमाइंड करती है कि कुछ रोल सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होते हैं. वैसे हाई फाइव टू यू अगर तुम भी दिलजीत के फैन हो मेरी तरह. मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चलाते कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज 16 जुलाई को अगर तुम्हारा जन्मदिन है तो मेरी तरफ से एक टाइट वाली झप्पी और एक मुआ वाली पप्पी। आज ऑफिशियली वो दिन है जब दुनिया थोड़ी सी ऑसम हो गई थी, क्योंकि आज तुम तो आए हो इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे साथ साथ बर्थडे स्क्वाड में कुछ सेलिब्रिटीज भी है। वो कौन कौन है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले द हिलेरियस विल फेरल। इनकी कॉमेडी को देखकर लगता है कि यार इनसे ज्यादा फनी कोई हो ही नहीं सकता। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस मैन। बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन कैटरीना कैफ भी आज ही के दिन इस धरती पर आई थी, बॉर्न हुई थी। शी ग्रेस्ड द वर्ल्ड विथ हर स्टाइल एंड डांस मूव्स। फुल पैकेज लेकर आई थी वो। एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी बहुत गड़बड़ रही उनके शुरुआती करियर में, लेकिन आई थिंक अब जाकर वो बातें ठीक हो चुकी है। सो हियर्स विशिंग हर हैप्पी बर्थडे विथ सम अमेजिंग सॉन्ग्स। एंड म्यूजिक लवर्स के लिए लेजेंडरी ड्रामर स्टुअर्ट कॉपलैंड, ऑफ द पुलिस एंड सॉन्ग राइटर सिंगर रूबेन ब्लेड्स, जिनकी म्यूजिक ने लैटिन वर्ल्ड में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। तो अगर आज तुम भी कैंडल्स ब्लो कर रहे हो तो मुझे शाउट आउट भेज सकते हो अपने लिए या किसी और के लिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। इंस्टा और एक्स पर सेम है, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चिपक के बैठे रहो यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिस, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: You know that thing must be 100 years old.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अरे अरे अरे, ज्वेलरी शॉपिंग का मन है, गोल्ड खरीदने का मन है, तो गोल्ड की अपडेट तो सुनकर जाओ। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,001, $4,001 पर ट्रेंड्स के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से भी थोड़ा सा नीचे हैं। और राज ज्वेल्स के साथ आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी, पोलकी एंड अनकट डायमंड्स, प्लैटिनम सेट इन विद डायमंड। राज ज्वेल्स की कलेक्शन के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग के लिए आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें राज ज्वेल्स को। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: And that's it for your gold rate update only on Mirchi Mornings with me Priscilla. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो Mirchi Mornings और आप पता करते हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है इन
2: Mirchi Hour का 3।
1: सबसे पहले अमेरिका से एक बिग पॉलिसी अपडेट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए प्रपोज्ड $1.5 trillion मिलिट्री बजट की अनाउंसमेंट की है। उनका कहना है कि इससे नेशनल डिफेंस और जॉब्स दोनों को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही एक पॉलिसी रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है कि ईरान कैंपेन की कॉस्ट जून 2026 तक $100 billion से ज्यादा हो चुकी है। नंबर टू पर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन अभी भी हेडलाइंस में है। ईरान ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम को रिजेक्ट किया है कि तेहरान टॉक्स के लिए अप्रोच कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि फिलहाल नेगोशिएशन का कोई प्लान नहीं है और फोर्सेस डिफेंस पर है। सिचुएशन अभी क्लोजली वॉच की जा रही है। एंड नंबर थ्री पर इंडिया के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया है। कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि उनकी हंगर स्ट्राइक के दौरान डेली मेडिकल मॉनिटरिंग इंश्योर की जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स टाइमली मेडिकल केयर देते रहें। कोर्ट ने कहा है एवरी लाइफ इज प्रेशियस। वांगचुक का हंगर स्ट्राइक का ये 19th डे है और उनकी हेल्थ अपडेट पर अथॉरिटीज नजर बनाए हुए हैं। एंड दैट्स इट फॉर Mirchi आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मेरा इंस्टाग्राम और एक्स पर हैंडल है Mirchi Priz, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033Mirchi, दैट्स 9033647244। फिलहाल Mirchi दार बैंगर्स का टाइम है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga. Burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग
3: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर
3: हैं.
2: इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है. इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात

0: में,
1: मेरे को इप्टीजिंग कर रहे हैं
0: आप। इप्टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ,
1: नहीं कर सकते आप,
0: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास न करें, लड़कियों
1: की लड़कियों सुरक्षा की तरह की
0: किस तरह की, नहीं आप किस तरह की बात कर रही है, 10:30 बजे क्यों गई आप, आगे फोन रखिए आप, बेकार की बात।
2: हेलो
1: हेलो,
2: आई कुड स्पीक टू कोमल, कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर,
1: ओके ओके ओके ओके
0: ओके ओके, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोमल कोमल कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है, मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आप साकेत क्यों कहीं नहीं 10:30 बजे।
1: मिस्टर ये आप हैं, मेरे को गुस्सा दिलाया,
0: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, मेरे साथ जरा हंस के बोल।
1: ओके कुकड़ू कू,
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, welcome back to Mirchi Mornings. मेरा नाम है प्रिसिला और अब चलो कॉफी सिप करते हुए, चाय पीते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, लेट्स फाइंड आउट हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज बोरिंग काम को पहले पहले खत्म कर लो. कल एक्साइटमेंट लाइन में खड़ी है तुम्हारे लिए, वेट कर रही है. तुम्हारा लकी कलर आज है ब्लैक. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बॉस मोड ऑफ, फन मोड ऑन. इतने दिन मेहनत की है, अब दोस्तों को कॉल करो, उनके साथ चिल मारो, वीकेंड का वेट क्यों करना है यार. लकी कलर फॉर यू इज फिरोजी. लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, जो चैलेंज सबको इम्पॉसिबल लग रहे हैं वही आज तुम्हारा माइक ड्रॉप मोमेंट बन सकते हैं. बिल्ली in yourself and act. Lucky color for you is lemon and lucky number is 9. Cancer yani kharkara.

इंडस्ट्री। करियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन आज किसी अपने को क्वालिटी टाइम देना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोन उठाओ, फोन लगाओ, सिर्फ स्क्रॉल मत करते रहो। लकी कलर फॉर यू इज व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, पार्टी इन्विटेशन आ सकती है, बस ये याद रखो कि फन करो, ओवर एक्टिंग मत करो। हीरो बनना है, हेडलाइन नहीं बनानी है। लकी कलर फॉर यू इज ओकर, लकी नंबर इज 31। वर्क यानी कन्या राशि, मनी मैटर्स में आज इम्पल्स शॉपिंग को नॉट टुडे बोल दो। कार्ट में ऐड करना इजी है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना काफी बड़ा इमोशनल डैमेज देकर जाएगा तुम्हें। लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट कलर, लकी नंबर इज 17। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ राशि जोन। प्रिसला थोड़ी सी देर में वापस आएगी राशि जोन का पार्ट 2 लेकर, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माई सोशल्स। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS। WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

0: आए हाय,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर वो टाइम जब हम यूनिवर्स की बातें सुनते हैं
2: मिर्ची राशि जोन
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि पार्टनरशिप्स में आंखें खुली रखो ट्रस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़ लेना लकी कलर फॉर यू इज पर्पल लकी नंबर इज 11 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि आज सोशल बैटरी लो रहने वाली है कोई बात नहीं थोड़ा सा मी टाइम सेल्फ केयर का VIP पैकेज होता है लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन लकी नंबर इज 24 सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आज अगर कोई अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहा है तो उसमें कैमियो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लाइक यू ऑलवेज डू पीस इज द न्यू फ्लेक्स लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू लकी नंबर इज 5 केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि ऑफिस में आज अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ अपना काम खुद अपनी इंट्रोडक्शन बन सकता है लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक लकी नंबर इज 18 अक्वेरियस यानी कुंभ राशि आइडियाज तो आज ब्लॉक बेस्टर आने वाले हैं बस एक्साइटमेंट में होल्ड माई कॉफी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स मत कर बैठना लकी कलर फॉर यू इज नेवी ब्लू लकी नंबर इज 33 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मेन राशि यूनिवर्स देख रहा है तुम्हें यूनिवर्स कह रहा है कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो तुम जितना अपने बारे में सोचते हो उसे कहीं ज्यादा केपेबल हो लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन लकी नंबर इज 7 एंड दैट्स इट For Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में This is Mirchi Mornings and check out my socials Insta और X पर मेरा handle है Mirchi Pris that is MIRCHIPRIS WhatsApp number है 9033 Mirchi that's 9033647244 Stay tuned and stay hot.

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot. Mirchi. Fresh Mal.
1: धमाल फोर में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: बस यार, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का सफर यहीं पर खत्म होता है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, लेकिन जाने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत तो बनती है यार। एक ऐसी स्टोरी चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर जो प्रूव करती है कि फैशन और ग्रेविटी की कभी भी नहीं बन सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ वुमेन एक पेयर ऑफ जारा ट्राउजर्स को मजाक में पैंट्स ऑफ डेथ कह रही है। आखिर ऐसा क्यों है? उनका कहना है कि इन ट्राउजर्स को पहनकर वो ट्रिप हो गई है या गिर गई है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। काफी सारे लोगों ने वीडियोज भी शेयर हैं जहां पर उन्होंने अपने फॉल्स और उनसे हुई इंजरीज दिखाई हैं बकायदा। अब सच क्या है और इंसिडेंट किस वजह से हो रहा है, उसका कंक्लूजन निकालना अभी तो मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि फैशन फैबुलस होना चाहिए, ऑब्स्टिकल कोर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम वाइड लेग या एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्राउजर्स पहन रहे हो, पहनते हो, और स्पेशली ऑफिस जाते वक्त, कम्यूट करते वक्त या सबवे स्टेशन की सीढ़ियों पर फुदक फुदक कर चलते वक्त, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। चाहे वो जारा की पैंट्स हो या किसी और ब्रांड की पैंट्स हो, स्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में बैलेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, बट ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर वेयरिंग दोज कोरियन पैंट्स, वाइड लेग या एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्राउजर्स पहन रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अर्लियर, यू हैव टू बी जस्ट अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। और इसी बात पे मेरी तरफ से एक रिमाइंडर है कि घर पहुंचते ही सबसे पहले शूज उतारो, उसके बाद अपनी ये पैंट्स उतार कर अपने पजामाज में आ जाओ एंड रिलीफ पा जाओ। और इसी के साथ मेरे भी घर जाने का टाइम हो चुका है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग ड्राइव, कॉफी ब्रेक, स्कूल ड्रॉप ऑफ या फिर ऑफिस कम्यूट, या फिर तुम घर पर ही मेरे साथ बैठे हुए हो। तुम्हारे बिना मिर्ची मॉर्निंग्स सिर्फ मेरे लिए मॉर्निंग्स है। और अब टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। मेरा हैंडल याद रखना, मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। बाय बाय।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब एक लॉयर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस यस यस, वो फिल्म मेकर थे, लेकिन उससे पहले, पार्टीशन से पहले कराची पाकिस्तान में वो एक लॉयर थे। फिर पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए, वहां से ये फिल्म बनाने की दुकानदारी कैसे शुरू हुई एक बार एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी साहब ने शेयर किया था।
1: वो जब आए यहाँ 47 में तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं समझ में आया होगा कि अब क्या किया जाए। सडनली सब कुछ हो गया और आना पड़ा, तो फ्लैट सिस्टम वगैरह शुरू किया था बॉम्बे में, बेच रहे थे तो कुछ फिल्म वालों को बेचा, तो वहां से मुलाकात हुई उनके साथ। और उनका शौक तो था ही, उनका कहीं ना कहीं दिल हमेशा करता होगा कि कुछ फिल्मों में कुछ हो जाए। एंड फाइनली कुछ 1951 में देवनंद और निम्मी और श्यामा, इन तीन को लेकर एक फिल्म बनाई गई सजा। फर्स्ट फिल्म वॉज सजा, तो ये शुरुआत हुई उनकी और धीरे धीरे वो बढ़ते गए।
0: इसी बात पे हम भी आगे बढ़ते हैं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: सच

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
4: Thank you.
5: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
4: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ, नहीं लगता उसका।
5: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
4: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
5: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
4: लगे हुए गेम है क्या ये?
5: आओ मिलो शिलो शालो,
4: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
5: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
4: आओ मिलो,
5: चिलो शालो,
4: चिलो शालो,
5: कच्चा धागा,
4: कच्चा धागा,
5: रेस लगा लो,
4: रेस लगा लो,
5: दस पत्ते तोड़े,
4: दस पत्ते तोड़े,
5: एक पत्ता कच्चा,
4: एक पत्ता कच्चा।
5: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
4: तोड़े,
5: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
4: दस दस दस पत्ते तोड़े,
5: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
4: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
5: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
4: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
5: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को।
5: मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
4: यार ये कुछ
5: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पहले उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, फिर फिल्मी लोगों से मिलने जुलने लगे तो फिल्म मेकिंग का काम भी शुरू किया। 50s में रमेश सिप्पी साहब अक्सर फिल्मों के सेट्स पे जाते थे, अपने फादर को मेहनत करते देखते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: काफी कुछ उनको करना पड़ा, जब आप सीख भी रहे हैं और नए धंधे में जा भी रहे हैं तो पेनल्टीज भी साथ साथ देनी पड़ती है। खैर आखिर में उनका स्पिरिट कुछ ऐसा रहा कि मैं तो कुछ करके ही दिखाऊंगा। उसी जोश के साथ मेरा भी जोश पैदा हुआ, उनके जोश के साथ मैं भी जोशीला बन गया। बचपन से चाहता था कि मैं भी कुछ करूं। मैं तो स्कूल में पढ़ रहा था तो बाकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन कभी कभी स्टूडियो चला जाता था तो वो वायर्स और लाइट्स के बीच में फंसे हुए इस खूबसूरत और अजीब सी दुनिया में पहुंच गए और अच्छा लगा। ऐसा लगा कि शायद कभी मौका मिले तो हम भी कुछ कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा उस वक्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि पढ़ाई करनी थी। लेकिन फिल्मों का शौक पैदा हो गया और फिल्में देखने शुरू की, वहीं से इंस्पिरेशन मिली। उस वक्त स्कूल वगैरह थे नहीं फिल्म एजुकेशन के, फिल्म ही एजुकेशन, उन्हीं से सीखना पड़ता है।
0: और मेरे ख्याल से इसी तरह से सीखना ज्यादा अच्छा रहता है, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लेते हुए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है फिल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर कुछ फिल्मों में काम भी किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उनके फादर जीपी सिप्पी भी फिल्म मेकर थे ना, तो उनके सेट्स पे ये हंसते खेलते कूदते पहुंच जाते थे और ऐसे ही काम भी कर लिया। अपने इस एक्टिंग स्टंट के बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 7 बरस की उम्र थी मेरी, शहंशाह फिल्म में मैंने मेन लीड वाले बच्चे का काम किया जब वो छोटे थे। रंजन साहब साउथ के बड़े एक्टर थे उस वक्त, और कामिनी कौशल के साथ एक दो लाइन का सीन था, बस अम्मी अम्मी अम्मी करके वो लिपट जाते हैं। पीरियड ड्रामा था। उसके बाद भी आगे चल के मैंने एक विलन का रोल प्ले किया, जग्गू दादा। ये भाई बहन फिल्म बनी 56 होगा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। टिपिकल जो ट्राइप गंजी गले में रुमाल पान वान चबा के स्ट्रीट के दादा, बच्चों के साथ बदमाशी और उस टाइप का।
0: बस ऐसी बदमाशी करते करते ये लड़का इतना बड़ा फिल्म मेकर बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब की स्कूली पढ़ाई के बाद उनके फादर जीपी सिप्पी साहब ने उनको लंदन भेज दिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इनका वहाँ पे दिल ही नहीं लगा, क्योंकि इनका दिल तो फिल्म के सेट्स पे लगा हुआ था ना, जहाँ ये बचपन से जा रहे थे। तो इन्होंने अपने पापा को बोला कि दिल नहीं लग रहा, पापा ने वापस बुला लिया। इस बारे में सुनिए रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: वहाँ से भी भाग आए तो यहाँ आके कॉलेज भी ज्वाइन किया मैंने, मॉर्निंग क्लासेस सुबह 7 से 10, ऑफिस स्टूडियो जहाँ भी देखते रहे। और वहाँ सिखाई, कोई एजुकेशन तो थी नहीं, वही एजुकेशन थी जो देख रहे थे हम सेट्स पे, कैसे क्या कौन क्या कह रहा है, कोई डायलॉग पढ़ रहा है, कोई बता रहा है, कोई रिहर्सल्स चल रहे हैं, ऐसे कुछ। और आगे बढ़ते रहे, मैंने तो वो साधना जी के चप्पल भी उठाए हैं मेरे महबूब के सेट पर। तब मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ असिस्टेंट करने गया था, 17 बरस की उम्र से लेके 25 बरस की, 8 साल काफी काम किया।
0: और इनका इतना काम करना इनके बहुत काम आया, क्योंकि तभी तो लड़के ने एक दिन ऐसा बढ़िया काम किया कि शोले जैसी फिल्म डायरेक्ट कर दी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: रमेश सिप्पी साहब ने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में फिल्मों के सेट्स पे जा जाकर फिल्में बनाना सीख लिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बचपन में वो अपने फादर जीपी सिप्पी साहब की फिल्में जो है उनके सेट्स पर चले जाते थे, फिर जब थोड़े बड़े हुए तो उनके दोस्तों और फिल्म मेकर्स के फिल्म के सेट्स पर भी जाते थे। ऐसे एक फिल्म के सेट पर उनको थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक पहली फिल्म जिसके सेट पर मैं गया था, जौहर महमूद इन गोवा, बहुत बड़ी हिट हो गई, लेकिन 2-3 साल लग गए बनाने में, और उसमें मैं सेट पे धीरे धीरे मेरे कदम इस तरह बढ़ने लगे कि जौहर साहब ने फाइनली कह दिया, यश जौहर साहब वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, तो उनको कह दिया कि भाई ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, तो आई हैड टू कीप क्वाइट, क्योंकि भाई कहते हैं कि कैमरा यहाँ क्यों नहीं रख सकते, आपका काम नहीं है डायरेक्टर या किसी को कहना, वो डायरेक्टर का काम है और कैमरामैन का काम है, आप सुनिए देखिए आगे चल के जब आप बनाएंगे तो की। पर ऐसे ही सीखता आदमी, गलतियां भी करना जरूरी है
0: जी, गलतियां नहीं करते तो फिर ऐसी ऐसी फिल्में कैसे बनाते। अंदाज, सीता और गीता, शोले, शान, शक्ति, सागर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: साढ़े दस बजे.
3: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे
3: हैं. गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
2: एडवाइस.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: हाँ क्या बात कर रहे
2: हैं? मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात करें.
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे
2: फोन
3: रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
2: हेलो.
3: Could I speak to Komal? Komal, hi. हम ईव टीजिंग को लेकर.
2: ओके.
3: कोमल
4: कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी साढ़े दस बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं?
4: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके. कुकड़ू कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रमेश सिप्पी साहब 21 साल की उम्र में ही एक फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कैसे ना बनते, उनके पापा फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जीपी सिप्पी साहब। नहीं भाई देखो ऐसा है, रमेश सिप्पी साहब बचपन से फिल्मों के सेट्स पर जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखना शुरू किया, अपने फादर की फिल्में, उनके दोस्तों की फिल्मों के सेट्स पर गए। काफी कुछ सीखने के बाद उन्होंने ये अचीव किया। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: फिर एक फिल्म हमने प्रोडक्शन हमारी शुरू हुई, मेरे सनम, आशा पारेख, विश्वजीत के गाने बहुत बड़े हिट हुए थे और अच्छी चली थी फिल्म। बहुत अच्छा वो रहा लर्निंग पीरियड, धीरे धीरे हमारी बात सुनने भी लगे लोग। एक तो शायद इसीलिए कि मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कुछ अच्छी बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ये सारे एक्सपीरियंसेस ने हेल्प किया। फिर मैंने जो मेजर फर्स्ट टाइम आई टुक क्रेडिट, आई वाज गिवन द क्रेडिट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन ब्रह्मचारी, उसका फिर आई वाज मच मोर एक्टिव ऑन द सेट्स हेल्पिंग। सेट्स पे भी मैं डिस्कस करने लगा कि अगर ऐसा करें तो, और वो अप्रिशिएट भी हो और वैसे किया भी गया।
0: फिल्म को भी काफी अप्रिशिएट किया गया, ब्रह्मचारी वाज सुपर हिट और इसका ये गाना भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: कूदते रहते थे। स्कूल के बाद इनके फादर ने इनको बिजनेस बिजनेस सीखने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी भेजा, लेकिन ये वहां से भाग आए क्योंकि इनका दिल तो फिल्म मेकिंग में लगा हुआ था। कई फिल्मों के सेट्स पर फिल्म मेकिंग सीखने के बाद 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में इनको एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रॉपर क्रेडिट मिला। इस फिल्म के सेट्स पर एक और चीज हुई जिसके बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ड्यूरिंग ब्रह्मचारी मैंने शम्मी साहब से बात की, कुछ मैं करना चाहता हूँ, आपकी तरफ से हाँ मिलती है मुझे तो मैं आगे बढ़ूँ, तो ये ऐसी बातें हुई और मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया सुनाया, जिसमें लेकिन शब्बी कपूर नाच गाने वाला आदमी और ऐसा मच्योर रोल, मैंने उनसे कहा आपने काफ़ी किया नहीं है, कुछ थोड़ा हटके कर कोशिश कीजिए, शायद अच्छा लगे आपको। कुछ दिनों बाद ठीक है कर लेते हैं, शुरू हो गया मेरा करियर भी शुरू हो गया।
0: लेकिन एक छोटी सी मुश्किल भी आई, करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब ने एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के लिए जो कहानी चूज की उसको काफी ऑपोजिशन मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1971 की फिल्म अंदाज, जो दो ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने पार्टनर्स को खो दिया है, मतलब एक विडो है एक विडोअर है, दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। इस बारे में रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मैंने जब पहली फिल्म बनाई तो एक रिस्क लेने का विचार किया कि कोई बात नहीं देखते हैं, और पिताजी मेरे जो थे वो बहुत ही बड़े दिल वाले थे और जो मुझे अच्छा लगा वही मुझे करने दिया। उन्होंने कहा जब कुछ फ्रेश चीज करने जा रहे हैं तो ऑपोजिशन तो होगी, लोग इमीडिएटली तो नहीं कन्विंस हो जाएंगे कि भाई आप सही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं हीरो हो हीरोइन हो नाच गाने हो ऐसे ही होना चाहिए। उस वक्त चलती थी फिल्में और सही अपनी जगह सब सही है, ऐसी बहुत सी फिल्में उस वक्त चली भी साथ साथ। आई थिंक आई जस्ट मेड अ चॉइस कि ये फिल्म पहली हो तो लोगों को लगेगा एक थोड़ा सा हटके काम करना चाह रहा है ये लड़का।
0: और ये लड़का एक और लड़के को इस फिल्म में गेस्ट रोल करने के लिए लेकर आ गया, वो लड़का जो सुपरस्टार बन चुका था, राजेश खन्ना साहब। और खन्ना साहब ये रोल क्यों ना एक्सेप्ट करते, उन्होंने अपने करियर की जो पहली फिल्म साइन की थी वो रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब की ही फिल्म थी, 1967 की राज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: जिंदगी

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: क्या बात कर रहे हैं, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हेमा मालिनी सीता और गीता फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थी। सुनिए इस बारे में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: सच बात तो ये है कि मुमताज जी को अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत सी फिल्में कर रही थी तो डेट्स नहीं थी और हम चाहते थे कि बस साल भर में कंप्लीट हो जाए और रिलीज हो जाए। सोचा फिर दिन के साथ काम किया है हेमा जी के साथ, उनसे पूछा तो वो थोड़ा सा पहले आप मुझे एक वीडियो का रोल देते हैं फिर आप कहते हैं डबल रोल, तो वो भी दिलीप कुमार ने किया हुआ रोल जो राम और श्याम टाइप का रोल। चैलेंज, शी टुक द चैलेंज एंड डिलीवर्ड।
0: और सीधी साधी नाजुक हेमा मालिनी जी को उन्होंने पंखे पे चढ़ने के लिए कैसे कन्विंस कर लिया था?
2: बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद चढ़ गया उस पे। मैंने पंखे पर चढ़कर उनसे कहा देखिए ये बिल्कुल मजबूत है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, देखिए। थोड़ा सा मैंने स्विंग भी कर लिया ताकि उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने देखा, काफी देर तक देखती रही कि ये अब गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे जो अजीज भाई थे उन्होंने बड़े मजबूती से वो पंखा फिट कर दिया था, तो जैसे मैं उतरा उन्होंने सांस ली और ये हमारा पहला शॉट था भाई।
0: कभी पंखे पे चढ़ रही थी, कभी रस्सी पे चल रही थी, कभी हवा से बातें कर रही थी। बड़ी मजेदार फिल्म है भाई सीता और गीता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
3: हवा के साथ साथ,
4: अरे रे रे।
3: घटा के संग संग,
4: संभलना।
3: हवा के साथ साथ।

0: Milchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vida para la murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello.
4: Hello. Hello.
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए गया,
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
4: मेरी बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
4: मेरी बात सुन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: आप ठीक है?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक बार कहा था कि हिंदी फिल्मों को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक शोले से पहले वाली फिल्में, एक शोले के बाद वाली फिल्में। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये विभाजन वाली लैंडमार्क फिल्म शोले बनाने वाले रमेश सिप्पी साहब ने इसके बारे में क्या शेयर किया था कि ये कैसे प्लान हुई थी, सुनिए।
1: 1972 1st of November हमने सीता और गीता रिलीज की, काफी सक्सेसफुल रही। और फरवरी मार्च की बात होगी, मुलाकात हुई हमारी सलीम जावेद के साथ ये तय करने के लिए आगे क्या करेगी। एक टू लाइन आइडिया था उनके पास जो हमें पसंद आया, और सिप्पी साहब माय फादर उनको भी पसंद आया। एक और सब्जेक्ट था, काफी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी जो मैं चाह रहा था कि हम बनाएं, तब तक शोले की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा नहीं, वो भूल जाओ, ये बनाओ। तो ये उनकी हिम्मत और ताकत थी कि एक इनकम्प्लीट सिर्फ स्टोरी आइडिया और पॉसिबिलिटीज नजर आई उनको, और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको परस्यू कीजिए, द रेस्ट इज हिस्ट्री।
0: बताइए, बैठे बैठे इतिहास रच दिया इन्होंने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश कमाल की टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है 1980 की शान। आई थिंक इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो विलन शाकाल, उसका वो अड्डा, वो पूरा आइलैंड, वो मगरमच्छ, उफ तौबा। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: काफी मुश्किल था वो सेट लगाना। मैं एक्चुअली आर्ट डायरेक्टर को लंदन ले गया था और वहाँ हमने कंसल्ट करके जेम्स बॉन्ड के आर्ट डायरेक्टर से बातें की और उनके चीफ असिस्टेंट जो थे उनको लेकर और मेरे अपने आर्ट डायरेक्टर को मैं वहाँ ले गया। उनसे बैठकर समझकर हमने पूरा सेट डिज़ाइन किया, जिसके वहाँ बड़े बड़े ग्लास बनाए और उस ग्लास के पीछे हम समंदर देख सकते हैं जिसमें शार्क्स और वो क्रोकोडाइल और वो सब नज़र आए। तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, वो लंदन के टेक्निकलर लैब ने किया और पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ने वहाँ किया ताकि वो लगे कि बैठे हैं और पीछे से ये
0: पीछे से शार्क दिख रही है, उधर से क्रोकोडाइल दिख रहा है। क्या बात है, इस फिल्म का म्यूजिक भी क्या बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब ने चाहे बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई हों, लेकिन जो बनाई हैं वो बहुत स्पेशल हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो अंदाज हो, सीता और गीता, शोले तो चलो अलग ही लेवल पे आती हो, उसका तो एक अलग ही स्टेटस है। देन शान, सागर, शक्ति, शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब साथ में, क्या इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ रमेश सिप्पी साहब को कुछ मुश्किलें आई, कुछ ईगो क्लैशेस हुए? इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: बिल्कुल सच बात बताऊं मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहानियां गाड़ सकता था तो काफी इंटरेस्टिंग और हो सकता था, लेकिन दोनों ने इतने प्यार से काम किया, इतने रिस्पेक्ट, अमिताभ बच्चन साहब को बहुत रिस्पेक्ट थी दिलीप कुमार साहब के लिए और उनके काम के लिए, और उनको भी बहुत इज्जत थी। एक नया लड़का उभर रहा है, उसके साथ काम करने का शौक भी था, और दोनों ने मिलकर हमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मुझे ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। अच्छे आर्टिस्ट लेने का फायदा तो है ना, सिर्फ उन्हें इंस्पायर करना जरूरी होता है, और कहीं थोड़ा सा इस तरफ ना चले जाएं, कहीं थोड़ा सा उस तरफ ना चले जाएं, वो संभालना पड़ता है। बाकी और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने सब कुछ सही कहा, सही किया और हिला दिया लोगों के हृदय को।
0: एक्चुअली काफी अच्छी फिल्म है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: देखो जिंदगी में पंक्चुअल होना बेसिकली ये प्रूव करता है कि भाई आप अपने कमिटमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड जनरली वी हैव सीन दैट हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके स्टारडम का सबसे बड़ा ठप्पा है कि भाई वो किसी भी इवेंट या प्रेस मीट में फॉर दैट मैटर लेट आते हैं। बट कुछ ग्लोबल स्टार्स ने इस चीज पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सो वी ऑल नो अबाउट क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म द ओडिसी, जिसके प्रेस मीट एंड प्रमोशंस के लिए द ग्लोबल स्टार्स क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड वर इन इंडिया। अलग अलग जगहों पे वो अपने प्रमोशंस को लेके प्रेस मीट्स कर रहे थे और जब बॉम्बे में ये थे तो दे वर ऑन टाइम, ऐसे पंक्चुअल दैट हमारे मीडिया फ्रेंड्स वेंट इनटू अ फ्रेंजी कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे टाइम पे कैसे आ सकते हैं लोग। एंड दिस एक्चुअली एक्सपोज्ड द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडियन सिनेमा, जहां किसी भी जगह हमारे सेलिब्रिटीज का लेट पहुंचना उनके स्टारडम का एक जीता जागता सबूत होता है। यस आई एग्री दैट देयर आर एक्सेप्शंस लाइक अमिताभ बच्चन सर या फिर अक्षय कुमार, बट जनरली तो हम भी सच्चाई जानते हैं यार। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स हाई टाइम दैट हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं वो अपने कमिटमेंट्स को लेकर थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो जाएं तो मजे ही आ जाएंगे यार। सोचने वाली बात, राइट? वैसे आप अपने लाइफ में जनरली पंक्चुअल होते हैं या आप भी लेट लतीफ वाले कैटेगरी में ही हैं? डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. हाउ आर यू?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: चिलो शालो,
1: चिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव बोले
2: कुकड़ू को. बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ
2: नहीं, सर ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स हॉट. हर काना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। कोई और मेरा कमबैक नहीं करवाएगा तो मैं खुद करूंगा यार। और ऐसा ही कुछ शायद हमारे राजा बाबू, बोले तो गोविंदा, ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वो अपना कमबैक अनाउंस कर चुके हैं, एंड दैट टू विद अ फिल्म जिसको वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाम है इस मूवी का रूपा, और एक इवेंट में इन्होंने इसका फर्स्ट पोस्टर भी अनवेल कर दिया। मूवी में इनके अलावा लीडिंग लेडी के तौर पर न्यू कमर रानी सरवनकर नजर आने वाली है। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बी टाउन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भूल भुलैया की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज गेटिंग अनदर मेजर चैप्टर, वेयर कार्तिक आर्यन इज सेट टू रिटर्न एज रूह बाबा, वाइल भूषण कुमार इस मूवी को एक बार फिर से प्रोड्यूस करेंगे, एंड द मेकर्स आर प्रायोरिटाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले इससे पहले कि वो फिल्म के डायरेक्टर को फाइनलाइज करें। और अगर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चलती गई, देन एक्सपेक्टेड है कि इस फिल्म की शूटिंग लेट 2027 से शुरू हो जाएगी। Statutory warning, this song may cause spontaneous bhangra. Okay, confused होने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रही हूँ about this नया गाना of upcoming highly anticipated film of Raghav Juyal. नाम है इस movie का भाई तेरा स्टार है, और इससे ही नया गाना release किया गया है, which is a पंजाबी number जिसमें सुधीर यदुवंशी और जैस्मिन सैंडलस की आवाज है, and I'm literally excited to watch the movie जो 30th of July को theaters में आएगी, so you better mark your calendars for this one. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम खेलने की बात कर रही थी। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज कि आपको इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ एंड वी स्टार्ट विद द गेम। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है संदीप शुक्ला जी, हु इज कनेक्टेड विद मी फ्रॉम हैदराबाद। हेलो सर, कैसे हैं आप? तैयार हैं आज का गेम खेलने के लिए?
3: बिल्कुल श्योर।
0: ओके, गोविंदा की फिल्म जिसमें नंदू सबका बंधू होता है।
3: राजा बाबू।
0: क्या बात है, राजा बाबू में गोविंदा को किससे प्यार होता है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है।
3: अच्छा, बीवी नंबर वन।
0: यस जी, बीवी नंबर वन में उनके हस्बैंड कौन है?
3: सलमान खान। सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है।
3: अरे करण अर्जुन। कितना आसान था।
0: करण अर्जुन में उनके भाई कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान एक डांस ग्रुप के डायरेक्टर किस फिल्म में बने हैं?
3: दिल तो पागल है।
0: क्या बात है, दिल तो पागल है मैं चाक धूम धूम कौन करता है?
3: उनके साथ माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित की फिल्म जिसमें वो चंद्रमुखी बनी है।
3: देवदास।
0: देवदास में देव के बचपन का प्यार कौन है?
3: पारो। ऐश्वर्या।
0: यस, ऐश्वर्या राय एक अट्रैक्टिव चोर किस फिल्म में बनी है?
3: धूम टू।
0: यस, धूम टू में एसीपी कौन है?
3: अपना अपना ये अभिषेक।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसका नाम एक भगवान की आरती के नाम पे है?
3: जगदीश।
0: ओहो क्या बात है, मुझे लगा था यहाँ तो अटकेंगे आप, बट कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश में सबसे बड़े भाई ओम को

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अपने अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने के लिए मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, आज इस गेम की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है और संदीप जी हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड थे, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं शिवांगी जी, हुज कनेक्टेड फ्रॉम लखनऊ विद अस। सो शैल वी कंटिन्यू द गेम विद यू?
3: लवली, आई वुड लव टू।
0: ऑल राइट, अरशद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं?
3: काबुल एक्सप्रेस।
0: यस इट इज। काबुल एक्सप्रेस में उनके को वर्कर कौन है?
3: जॉन इब्राहिम।
0: फोटोग्राफर किस फिल्म में बनते हैं?
3: गरम मसाला
0: में मैम्बो कौन है?
3: परेश रावल।
0: स्टार गराज के मालिक किस फिल्म में है?
3: हेरा फेरी।
0: यस इट इज। हेरा फेरी में लड़की का चक्कर किसका होता है?
3: सुनील शेट्टी।
0: किस फिल्म में अंजलि को भूलने नहीं वाले और ना उसको
3: भूलने
0: धड़कन में अंजलि की शादी किससे होती है?
3: अक्षय कुमार।

0: Pepe Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Pepe, hello. Hello.
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज़।
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने ड्रिल मशीन के, सारे जाग जाएंगे यार।
3: तू चोरी करने के लिए गया?
4: तुमने पहले के लिए
3: बताया चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा। मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है,
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बदलाव सिर्फ लाउड प्रोटेस्ट्स के वजह से ही नहीं आती।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय, बाबू मोशाय। एंड एज वी नो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और अगर आप अपने समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। और ये चेंज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें बहुत सारे यूथ आइकन्स ऐसे मिले हैं थ्रू कैरेक्टर्स जिन्होंने इस चेंज को मोटिवेट किया है हमारे अंदर भी। लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की फिल्म युवा से माइकल के कैरेक्टर की, प्लेड बाय अजय देवगन। अब नंबर दो पे मोहन भार्गव की बात करना चाहती हूँ फ्रॉम द फिल्म स्वदेश, प्लेड बाय शाहरुख खान। ऑफ कोर्स ये फिल्म रिलीज हुई थी 2004 में, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर, जिसमें शाहरुख खान और गायत्री जोशी लीड रोल्स में थे। मोहन का एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है कि मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हम में काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। And that was the change I was talking about. अपने आप से अगर शुरुआत करेंगे तो प्रोसेस भले ही लंबा हो लेकिन अल्टीमेट गोल तक पहुंचेंगे जरूर हम। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म लज्जा से मैथिली के कैरेक्टर की। मूवी रिलीज हुई थी 2001 में, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी, जिसमें माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अजय देवगन, मनीषा कोयराला, रेखा, महिमा चौधरी और जैकी श्रॉफ जैसे अमेजिंग स्टार्स थे। और फिल्म में महिमा का जो कैरेक्टर है वो एक यंग ब्राइड है जो प्रेग्नेंट हो जाती है और साथ ही अपने इन-लॉज से डाउरी हैरेसमेंट भी झेल रही होती है। फिर वो जिस करेज के साथ अपने इन-लॉज को कन्फ्रंट करती है और अपने इस ओप्रेसिव मैरिज को छोड़ के बस निकल जाती है, वो दिखाता है एक बोल्ड एक्ट ऑफ लीडरशिप इन अ सोसाइटी जहां औरतों को हमेशा चुप रहने का अधिकार दिया गया है। मूवी नहीं देखी, देन इट इज अ डेफिनेट वॉच। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में बाकी के दो कैरेक्टर्स की बात लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Abu Moshai, change begins with yourself.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: देखिए, एक बहुत ही फेमस सी कहावत है कि अगर आप अपने समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी. इनफैक्ट अपने आप से करनी होगी. और बस इसी चीज को पर्सपेक्टिव में रखते हुए आज मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे यूथ आइकॉन्स, बोले तो ऐसे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ जिन्होंने इसी सोच के साथ समाज में बदलाव लाने की कोशिश की. लिस्ट में सबसे पहले हमने फिल्म युवा से माइकल के कैरेक्टर की बात की. नंबर दो पे स्वदेश से मोहन भार्गव. नंबर तीन पे लज्जा से मैथिली. अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट फूलन देवी फ्रॉम द फिल्म बैंडेड क्वीन. ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में और इस फिल्म में सीमा बिस्वास ने जो कैरेक्टर पकड़ा है फूलन देवी का, उनके कैरेक्टर का आर्क काफी वाइड है. ब्रूटल विक्टिमाइजेशन से लेकर फ्यूलेस लीडरशिप तक. ये कहानी है एक यंग औरत की जो कास्ट ऑपरेशन, जेंडर वायलेंस, सिस्टमेटिक बिट्रेयल सब कुछ झेलती है, स्टिल अपने पेन को एक पावरफुल फोर्स में बदल के हर उस इंसान के खिलाफ खड़ी होती है जिसने उसके साथ गलत किया. चलिए नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म रंग दे बसंती से पूरे के पूरे गैंग के बारे में. वेल, ये फिल्म डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, जो 2006 में रिलीज हुई थी. और इस मूवी में आमिर खान, सोहाली खान, शर्मन जोशी, सिद्धार्थ, कुणाल कपूर और आर माधवन जैसे एक्टर्स हैं. सो फिल्म में एक डायलॉग है, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते रहो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की जर्नी इज अ प्रूव दैट आउटरेज जब सही तरीके से चैनलाइज किया जाए क्लैरिटी के साथ तो वो सिस्टम को हिला कर रख सकता है. तो बाबू मोशाय, मेरे इस लिस्ट में अगर आप भी कोई ऐसा ही यूथ आइकॉन इंक्लूड करना चाहें फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, देन फील फ्री टू डू दैट. मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची
0: खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। कोई और मेरा कमबैक नहीं करवाएगा तो मैं खुद करूंगा यार। और ऐसा ही कुछ शायद हमारे राजा बाबू, बोले तो गोविंदा, ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वो अपना कमबैक अनाउंस कर चुके हैं, एंड दैट टू विद अ फिल्म जिसको वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाम है इस मूवी का रूपा, और एक इवेंट में इन्होंने इसका फर्स्ट पोस्टर भी अनवेल कर दिया। मूवी में इनके अलावा लीडिंग लेडी के तौर पर न्यू कमर रानी सरवनकर नजर आने वाली है। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बी टाउन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भूल भुलैया की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज गेटिंग अनदर मेजर चैप्टर, वेयर कार्तिक आर्यन इज सेट टू रिटर्न एज रूह बाबा, वाइल भूषण कुमार इस मूवी को एक बार फिर से प्रोड्यूस करेंगे, एंड द मेकर्स आर प्रायोरिटाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले इससे पहले कि वो फिल्म के डायरेक्टर को फाइनलाइज करें। और अगर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चलती गई, देन एक्सपेक्टेड है कि इस फिल्म की शूटिंग लेट 2027 से शुरू हो जाएगी। Statutory warning, this song may cause spontaneous bhangra. Okay, confused होने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रही हूँ about this नया गाना of upcoming highly anticipated film of Raghav Juyal. नाम है इस movie का भाई तेरा स्टार है, और इससे ही नया गाना release किया गया है, which is a पंजाबी number जिसमें सुधीर यदुवंशी और जैस्मिन सैंडलस की आवाज है, and I'm literally excited to watch the movie जो 30th of July को theaters में आएगी, so you better mark your calendars for this one. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot.

बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट में मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग
3: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है. इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: से 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: ये खुद गुस्से में हो.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा टीजिंग की बात.
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की सुरक्षा की बात कर रहे
3: हैं. किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागर फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके
3: ओके मेरी बात सुनिए. कोमल आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी 10:30 बजे?
2: मिस्टर ये आप हैं
3: जी,
2: मैं आपको गुस्सा दिलाया. आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नज़र के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डेलिबरेटली बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शुभ है बादशाह श्याम शानदार लेट्स डू नॉट
1: डंकी हैव अ फंकी टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज़्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हां, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि यह गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और 6-पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक Eyes off। वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द यानी दर्द दे डिस्को राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Radio Mirchi New York. It's hot.
1: Mirchi. Fresh Maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी.

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने। म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज़्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर। जी हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेपी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे, जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवानगी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो,
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: वेरी फाइन, थैंक यू।
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे, यू नो।
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह, आओ मिलो शिलो शालो, कच्चा धागा रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशनली ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल। तो दोस्तों धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट, और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था। और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज। तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है, उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर। और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और थ्रो बैक थर्सडे पर आज बात हो रही है उस जोड़ी की जिन्होंने यार हर मूड को ना अपनी धुन दे दी। कभी सोचा है कि स्कूल के एनुअल डे से लेकर कॉलेज फेस्ट तक, शादी के संगीत नाइट से लेकर रोड ट्रिप्स तक, कितने बार हम एक ही म्यूजिकल जोड़ी के गाने पर नाच चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। जी हाँ, फिर एक दिन जब प्लेलिस्ट देखी ना तो बोले कि यार ये सारे गाने इन्हीं के थे, यही तो कमाल विशाल शेखर का। पार्टी एंथम भी ऐसा कि डांस फ्लोर भर जाए और मेलेडी भी ऐसी कि हेडफोन्स लगाकर दुनिया भूल जाए। और शायद इसीलिए ना इनके गाने सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, मेमोरीज में भी रहते हैं। और सच कहूँ तो ऐसे कंपोजर्स के गाने जब भी लाइव सुनने मिलते हैं ना तो नॉस्टैल्जिया भी बीट पकड़ लेता है। तो आज थ्रोबैक थर्सडे पे आप भी बताइए कि ऐसा कौन सा विशाल शेखर पार्टी सॉन्ग है जो सुनते ही आपके भी पैर थिरकने लगते हैं। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि इस वीकेंड विशाल शेखर खुद सबको थिरकाने आने वाले हैं न्यू जर्सी में। तो दोस्तों मैं तो जा रही हूं, आप भी मुझे बताइए कि अगर आपको भी मौका मिले तो कौन सा गाना सुनेंगे उनका। और चलिए वॉल्यूम बढ़ा देते हैं क्योंकि 10 बहाने बजने वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किन खालिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी दा नाड़ा किन खिचिया।

0: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो हेलो
2: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज
3: साहब? आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी,
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये क्या, बंद कर इसको, बंद कर बंद कर बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे? यार मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया,
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे मशीन से है कौन, तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: बात सुन,
2: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: बात सुन,
2: हेलो
3: यार कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ जोड़ियां ऐसी होती है ना जो सिर्फ गाने नहीं बनाते बल्कि यादें भी कंपोज करती है। जी हाँ, थ्रोबैक थर्सडे का सबसे खूबसूरत सरप्राइज पता है क्या है? एक पुराना गाना, उसके बस दो लाइन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त रिवाइंड हो गया हो। कॉलेज की कैंटीन, या पहली लॉन्ग ड्राइव, या पहला क्रश, या वो बारिश वाली शाम, सब एक ही पल में ना वापस आ जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज होता है कि यार, इन गानों के पीछे ना कितने बार एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने बस कैजुअली ये गाने बना दिए और दिल को छू दिए। जी हाँ, विशाल शेखर की धुनों की बात हो रही है। और ये तो उनकी खास बात है कि यार, एक तरफ तो फुल ऑन पार्टी ट्रैक्स बजाते हैं, फुल ऑन पार्टी ट्रैक्स कंपोज करते हैं, और उसी एल्बम में दूसरी तरफ बिल्कुल चुपचाप दिल को छू लेने वाले मेलोडीज भी बनाते हैं। हर जॉनर में एक अलग पहचान बनाई है इस जोड़ी ने। और वैसे अगर कभी मौका मिले कि इनके गाने लाइव सुनने मिले तो यार, उसकी यादें बहुत ही खूबसूरत होंगी, जो कि इस शनिवार को होने वाला है, जहां मैं जाने वाली हूँ विशाल शेखर के गाने लाइव सुनने के लिए। तो आप भी मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप भी ये कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो तो ऐसा कौन सा रोमांटिक गाना है विशाल शेखर का जो आपके लाइफ का परमानेंट साउंडट्रैक है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अब एक ऐसी मेलोडी जो आज भी दिल के प्लेलिस्ट पे टॉप पर रहती है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है? कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस। और फिर पूरा सफ़र बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे। और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नजर थोड़ी सी बदल चुकी है। जीपीएस बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रख कर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। DM me on Insta @RJMirchi सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल इस थ्रो बैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था, और उस वेट का भी एक अलग ही मजा होता था। और मजे की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतजार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना, वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट हम खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकेंड्स के क्लिप्स है, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के ज़माने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ज़िंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक लेजेंडरी बारिश वाले गाने से। जी हाँ दोस्तों, जब भी बारिश की बात होती है ना तब एक गाना दिमाग में जरूर आता है, टिप टिप बरसा पानी। वैसे तो यार स्क्रीन पे देखो ना तो फुल ऑन रोमांटिक लगता है, एकदम फुल रोमांस इन द रेन। लेकिन पर्दे के पीछे रवीना टंडन जी ने बताया कि शूट कितनी ज्यादा टफ थी, मतलब रेन मशीन्स के साथ स्लिपरी फ्लोर और वो सारी और मल्टीपल रीटेक्स। वैसे तो यार डांस ग्लैमरस तो लगता है, स्पेशली रवीना जी इन द येलो साड़ी, पर सेट पर सबको बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो समझे दोस्तों, मतलब बॉलीवुड में ना यार रेन सॉन्ग रोमांटिक तो लगता है लेकिन पर्दे के पीछे सबकी बैंड बजती है। वैसे क्या आपने कभी इस गाने पे रेन में डांस करने की कोशिश की है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना
3: क्या बना,
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: इस दैट मिस्टर विपुल?
4: यस
5: मिस्टर विपुल, हाय आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com। आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
4: हाँ हाँ बोलिए।
5: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
4: ओके।
5: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
4: बट इसमें करना क्या होगा?
5: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
5: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा CV है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
4: फाइन।
5: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
4: इन हैंड।
5: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
4: अच्छा ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है, बी कैटेगरी में क्या आता है?
5: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के CEO हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
4: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
5: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
4: Have you gone mad?
5: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
4: क्या बकवास कर रहे हैं?
5: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
4: हेलो
5: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
4: हाँ
5: सर, मनीष। सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
4: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
5: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराएं ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है

only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल। यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देवानंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देवानंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से

समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मर्जी सिद्धि। चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।